FM 101 दशमलव मेगा हर्ट्स पर ये वेद भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026 प्रातः के 5:57 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: अपमेंड 101.9 MHz पर ये विद भारतीय राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान

0: वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएमएडिक से 1.9 MHz पर ये विद भारती राष्ट्रीय सेवा का उदयपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं विद भारती राष्ट्रीय सेवा से, सुनते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदनवार।
2: हमारे कार्यक्रमों का आनंद दिन रात लगातार ले सकते हैं और वो भी दुनिया के किसी भी कोने में।
3: ये है विविध भारती
2: वंदनवार।

चिंतन। गोस्वामी तुलसीदास का कथन है, फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के समय सज्जन भी नम्र होते हैं, परोपकारियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। ये था चिंतन। अब भक्ति संकीर्तन।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए आज दिन भर के कार्यक्रमों का लेखा जोखा। सुबह 7 बजे बोले बिसरे गीत कार्यक्रम होगा। 7:30 पर आप सुनेंगे हम ही राही प्यार के। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला चल रही है ऐसी लागी लगन। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलोटा। आज 5वीं कड़ी होगी सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता विकी कौशल पर। यह कार्यक्रम सुबह 9:30 पर होगा और रात 9:30 पर। दिन में 1 बजे सुहाना सफर कार्यक्रम सुनिएगा, सुरीला सफर कार्यक्रम सुनिएगा। 3:30 पर आप सुनेंगे नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक शकुंतला। 4 बजे के अंतर्गत आज शाम 4 बजे जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। सुबह 8:15 पर और दिन में 2:15 पर, दिन में 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग हमारे संग्रहालय से निकालकर प्रस्तुत की जा रही है। शाम 7 बजे ये कार्यक्रम सुना जा सकता है। हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे कहानी पत्नी का पत्र के वाचन का दूसरा भाग।

आप सुन रहे थे विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

भरत तथा शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में राम वनगमन, महाराज दशरथ का स्वर्गवास आदि जो भी घटनाएं घटी, उनके फलस्वरूप भरत का हृदय ग्लानी से भर गया था। शोक और परिताप की ऐसी अवस्था में इस मनस्थिति से उबारने के उद्देश्य से मुनिवर वशिष्ठ ने सांत्वना भरे जो उपदेश दिए, प्रस्तुत प्रकरण में आप उनका वर्णन सुनेंगे। मुनि का उपदेश था, स्वर्गवासी महाराज का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग कर प्रजा का पालन करो। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करते देख श्री राम और जानकी भी सुख पाएंगे। श्री राम के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप कर स्नेह भाव से उनकी सेवा करना। मंत्रीगण ने भी भरत को गुरुवर वशिष्ठ की आज्ञा पालन करने का परामर्श दिया। माता कौशल्या ने अपने हृदय में धीरज धारण कर मुनिवर वशिष्ठ के उपदेशों का आदर करने का अनुनय किया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। आठ कवल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण दीनी चदरिया, दास कबीर जतन कर ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। निर्गुण भक्ति धारा के अप्रतिम कवि संत कबीर ने समाज की विडंबनाओं को उजागर किया और एक जीवन दर्शन दिया। ऐसी लागी लगन भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला की इस कड़ी में एक बार फिर हम श्री अनूप जलोटा जी का स्वागत कर रहे हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आज की इस कड़ी में अनूप जी, कबीर की रचनाओं की चर्चा हम करेंगे। बताइए किस रचना, या यूं कहें कि जो हमें पसंद है, आज उसकी चर्चा करें। चदरिया झीनी रे झीनी।
2: चदरिया झीनी रे झीनी मेरे पिताजी ने बहुत गाया और बहुत लोकप्रिय किया। उसके बाद मैं भी चल पड़ा इस भजन को लेके आगे। ये भजन यूं तो राग देश पर आधारित है, लेकिन इसमें एक रागमाला प्रस्तुत की जाती है, और वो रागमाला प्रस्तुत करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि लोगों में जो लोग शास्त्रीय संगीत के शौकीन नहीं थे वो इस ओर आकर्षित हो गए और शास्त्रीय संगीत सुनने लगे, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे दर्शन हम रागों के कराते हैं उससे उनका जी नहीं भरता और वो कहते हैं इसको और गाइए। इस तरह से शास्त्रीय संगीत की ओर लोग आकर्षित हुए, इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

अर्थात शरीर ने जन्म लिया। रंगरेज रंगरेज है गुरु, गुरु के पास शिक्षा का रंग चढ़ाने के लिए इस चादर को भेजा गया।

0: माल कौन?
1: सुदामन यो
0: मर धनी सा धनी सा घर धनी रा धनी नी धा धनी नी धनी सा घर धनी सा धनी सा घर धनी सा घर धनी सा सामग सग सनी सनी धनी रा धनी सा घर धनी धनी सा घर धनी धनी रा धा धा धा धनी धनी सा

0: वाह, बहुत सुंदर। बहुत बार सुना है ये भजन, हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि पहली बार सुना। और इतनी बारीकियां पता चली, कई रागों की छटा देखने को मिली। आप अनूप जी हमें बताइए, हमारे तमाम श्रोताओं को, कि ये जो रागों का खेल करते हैं, कई रागों का मिश्रण करते हैं, उसके बावजूद सरलीकरण करके लोगों तक पहुँचाते हैं भजन, ये जादू कैसे करते हैं?
1: वैसे भी राग सरल चीज है, राग कठिन चीज नहीं है। राग का मतलब है कि किसी चीज को और सुंदर बनाना। तो जब स्वरों को एक सुंदर रचना दी जाए, एक सुंदर कॉम्बिनेशन दिया जाए, तो एक राग बन जाती है। यूं ही लोगों को डरा दिया गया है कि यह क्लासिकल मुश्किल चीज है। क्लासिकल बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, थोड़ा आपका कंसंट्रेशन हो, तो इसका आनंद दुगना हो जाता है। आपको अगर थोड़ा सा रागों का पता लग जाए, तो उसी गाने को जो आप पहले से सुन रहे हैं, उस गाने को आप ज्यादा इंजॉय करने लगेंगे, अगर आपको पता लग जाए कि ये किस राग में है। इसलिए शास्त्रीय संगीत की ओर आपका झुकना, आपका आकर्षित होना बहुत आवश्यक है, तभी आप संगीत में और आनंद ले सकेंगे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी देने के लिए। हमारे श्रोताओं का भी बहुत लाभ हो रहा होगा, और वैसे भी संगीत सरिता एक पाठ की तरह है श्रोताओं के लिए। कलम और कागज लेकर बैठते हैं, नोट करते हैं, और हम भी कागज कलम लेकर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब समय आ गया है इस कड़ी को समेटने का। ऐसी लागी लगन, भक्तिभाव पर आधारित इस श्रृंखला की ये थी पांचवी कड़ी।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जाने माने गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में सुनिए भूले बिसरे गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

0: आइए सुने भूली बिसरी गीत। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम यूनुस खान है।
1: ये तस्वीर तो मेरी है।
2: नहीं, ये उसकी है जो हमेशा मेरे ख्यालों में आता है। और इससे मैं कहती हूँ,
0: क्या आप इन आवाजों को पहचान गए? इन आवाजों के पार एक बेमिसाल गाना।

बुले बिस्तरे गीत कार्यक्रम की ये पहली पेशकश थी। केदार शर्मा के बोल थे, रोशन की तर्ज, और ये आवाज़ गीता रॉय और मुकेश की थी। बावरे नैन फिल्म सन 1950 में आई थी, जिसका गीत इस वक्त हमने आपको सुनवाया। बुले बिस्तरे गीत कार्यक्रम में कुछ ऐसे गाने जो गुजरे दौर के गाने हैं और चमकते हुए सितारे हैं, पर उनकी चमक शायद आज के इस फॉरवर्ड जमाने में थोड़ी धुंधली पड़ गई है। फिल्म का नाम है रंगोली, गीत शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। विविध भारती से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम चल रहा है और सुबह के 7:11:40 हो चुके हैं और ये गाना गूंज रहा है। ये मासूम सी आवाज अमित गांगुली की, फिल्म का नाम दूर कराही, गीत ए इरशाद, संगीत किशोर कुमार।

अमित कुमार की आवाज थी दूर का राही फिल्म का ये गाना ए इरशाद का लिखा हुआ था और संगीत किशोर कुमार का था। कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, और अब हम एक गीत सुनवा रहे हैं जो आपको एक दूसरे गीत की याद दिलाएगा। बनारसी ठग फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रेम धवन के बोल, संगीत इकबाल कुरैशी का है। दिलचस्प बात यह है कि ये धुन किसी और ही गाने की याद भी दिलाती है।

बनारसी ढक फिल्म का ये गाना किसी और ही गाने की याद दिलाता है और इसे हम एक पहेली की तरह ही छोड़ देते हैं। आपको जरूर वो गाना याद आ गया होगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। किशोर कुमार की आवाज अब गूंज रही है। फिल्म का नाम मुनीब जी।

मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का गाना है ये कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। गीत और आई की आवाज मजरू सुल्तानपुरी ओपी नैयर।

संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से

सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये रास्ते ही प्यार की फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, संगीत रवि का था। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में संजोग फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का है।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को तुम्हें इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: खो गया इंतजाम।
7: किसका?
6: गुड्डी की फीस का।
7: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
8: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अपोमेंडिक्स है कि 10.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा का दर्पण केंद्र है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, सुनते हैं समाचार प्रभात और 8:15 पर आप

0: ए मॉर्निंग न्यूज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
3: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद

0: शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महाआवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह को

लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय

0: 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मेमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है, साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वक्त ही गिरना सिखाता, वक्त ही चलना बताता, जो हारते हुए भी हंस लेता है वक्त उसको जीत दिलाता। रुकना अगर गुनाह लगे तो आगे बढ़ते जाना तुम, वक्त की इस पाठशाला में हर दिन एक नया सबक पाना तुम। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज़ करते हैं उदयपुर के दैनिक और आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर का। और आज के इस अंक में आपके रेडियो सेट पर मैं हूं अमित और मेरे साथ हैं,
1: मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त शमील।
0: और इसी के साथ हम आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार भेजते हैं।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्योंकि आज शनिवार है और आज वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है। तो सबसे पहले वीकेंड की शुरुआत में हम बात करेंगे शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के बारे में।
1: बिल्कुल, दूसरे सेगमेंट की बात करें तो फॉय कॉन रूट यानी लोक और परंपरा की बात करेंगे और इसमें आज हम बात करेंगे विवाह संस्कारों में लोक गीतों की भूमिका के बारे में।
0: बिल्कुल, और साथ ही होगी स्थानीय खबरें और आईपीएल की अपडेट। उसी के साथ में एंटरटेनमेंट लॉज में हम बात करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर के बारे में।
1: बिल्कुल, और अवेयरनेस के बारे में जानकारी हम आपको देंगे और बातचीत का विषय होगा हमारा युवाओं के लिए बजट फ्रेंडली ट्रेवल टिप्स।
0: तो जानकारियां बहुत सारी है और मनोरंजन भी, बने रहिए आकाशवाणी उदयपुर के साथ।

0: तो क्योंकि गर्मी की छुट्टियां पड़ गई है और गर्मी की छुट्टियां ऐसी छुट्टियां होती है जिसमें हम अपने ज़माने में तो काफ़ी मज़े किया करते थे, काफ़ी पेड़ पौधे हुआ करते थे तो हम घूमने निकल जाया करते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्मी है, तपिश है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो सरकार है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ प्लानिंग्स की हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि बच्चे जो गणित में कमज़ोर हैं उनके लिए इस समर वेकेशन में एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी, उनको श्रुति लेख यानी कि हैंड राइटिंग सुधार के लिए कुछ सेशंस दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है।
1: बिल्कुल, स्थानीय खबरों की हम बात कर रहे हैं। स्थानीय खबरों में जैसा कि आपने कहा कि गर्मी के जो तेवर हैं वो बड़े तीखे हैं, और इस समय महाराणा प्रताप खेलगांव के स्विमिंग पूल में क्लासेस जो हैं कक्षाएं चल रही हैं, यानी वहाँ पे स्विमिंग सिखाई जा रही है। यहाँ का माहौल इस वक्त पूरी तरह बदल गया है, बच्चे तैरना सीख रहे हैं, साथ ही वो इस समय गर्मी से भी राहत पा रहे हैं। और बच्चों के उत्साह को देखते हुए यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं भी की गई हैं, बच्चों के प्रोफेशनल कोच की देखरेख में सुरक्षित तरीके से तैराकी सिखाई जा रही है।
0: बिल्कुल, और खबरों की बात करें तो उदयपुर से न्यू जलपाईगुड़ी सहित राजस्थान की 3 ट्रेनें प्रभावित होंगी क्योंकि काम चल रहा है, और ये जो ट्रेनें हैं ये जिन मार्गों पर फेरबदल किया है उसमें अजमेर किशनगढ़ एक्सप्रेस आगामी 8, 9 और 11 जून को प्रभावित रहेगी। उसके बाद में अगली जो ट्रेन है वो है कामाख्या भगत कोठी की एक्सप्रेस, जो 12 जून को अपने नियमित मार्ग की बजाय पाखावली ठाकुरगंज से होकर संचालित की जाएगी। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार स्केड्यूल फिर से चेक कर लें।
1: बिल्कुल, स्थानीय खबरों में हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन शिविर की, और भारतीय लोक कला मंडल में 1 माह का ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू हो गया है, और इसमें बच्चों और युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है लोक कलाओं के बारे में। इस शिविर में लोक नृत्य, लोक गीत, लोक वादन और दस्ताना पुतली निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल, और साथ ही बात करें तो बागोर की हवेली में छाया चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है जो सुबह 9:30 बजे से शुरू हो जाएगी, तो जो भी कला प्रेमी हैं वहाँ जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, टखमन 28 की ओर से राज्य छात्र कला प्रदर्शनी 2026 की प्रदर्शनी और पुरस्कार वितरण समारोह आगामी 26 मई को होगा। राजस्थान के लगभग हर जिले के कला महाविद्यालय और संस्थानों के विद्यार्थियों ने अपनी कलाकृतियां भेजी है, जिससे यह राज्य स्तरीय युवा कला अभिव्यक्ति का भी एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।

0: ये प्यारा सा गीत अभी आपने सुना, और हम हमेशा कहते हैं अमित कि अपनी सेहत का हमें ख्याल रखना चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: और अगर साफ बात सेहत की हो तो खेल से जुड़े रहना अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखने में कितना अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, मैं आपका इशारा बिल्कुल समझ रहा हूँ। और अब हम खेल जगत पे बात करेंगे।

0: तो शमिल, कल के आईपीएल मैच की अगर हम बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में बहुत ही शानदार मैच रहा, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 187 रन का लक्ष्य दिया और टीम की ओर से कार्तिक शर्मा ने 71 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जिसके अंदर उन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए। और जवाब में जब लखनऊ की शुरुआत तो काफ़ी दमदार रही और मिशेल मार्श ने केवल 38 गेंदों में 90 रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया और लखनऊ ने 188 रन का लक्ष्य मात्र 16 ओवर और 4 गेंदों में ही प्राप्त कर लिया।
1: बिल्कुल, मात्र 7 विकेट खोकर लखनऊ ने चेन्नई को हरा दिया और मार्श प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए। बिल्कुल अमित, हम बात करते हैं आज होने वाले मुकाबले की, और आज है आईपीएल के 19वें सीजन का 60वां मैच और ये मैच आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच ईडन गार्डन पर खेला जाएगा। समय शाम को 7:30 पर ये मैच शुरू होगा।

0: तो प्यारा सा गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। अमित, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के दिवस की बात करते हैं, यानी दिन
1: बिल्कुल
0: विशेष की बात करें तो आज है 16 मई और आज पूरी दुनिया में शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अमित यही है कि सभी के बीच में प्रेम हो, भाईचारा हो, सहिष्णुता हो और आपसी सम्मान की भावना बनी रहे।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज के समय में जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष, हिंसा, नफरत, असहिष्णुता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तब ये दिवस हमें याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, स्वीकारने और मिलकर आगे बढ़ने की भावना का नाम है।
0: बिल्कुल, आज के दिन का जो मनाने का

0: उद्देश्य है वो यही है, और ये दिन यही संदेश देता है कि भाषा हो या संस्कृति या आपके विचारों में भिन्नता हो सकती है, उसके बावजूद हम सब एक मानव परिवार का हिस्सा है। यदि समाज में संवाद, सहयोग और संवेदनशीलता बनी रहेगी तो कई समस्याओं का समाधान बहुत ही आसानी से निकल सकता है।
1: बिल्कुल, हर वर्ष इस दिवस की कुछ न कुछ थीम रखी जाती है, और इस वर्ष यानी कि 2026 की थीम है लिविंग टुगेदर इन पीस, बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू डायलॉग, इंक्लूजन एंड रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि संवाद, समावेश और मेल मिलाप के माध्यम से विश्वास का निर्माण करना।
0: बिल्कुल अमित, और देखो तो ये थीम भी हमें यही बताती है कि शांति की शुरुआत हमेशा विश्वास से होती है। जब समाज में हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिलता है तो एक दूसरे की बात को सभी सुनते हैं और आपसी मतभेदों को बातचीत से ही सुलझा लेते हैं, और तभी वास्तविक शांति स्थापित होती है।
1: आज की वैसे भी ये सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम अपने घर पर, विद्यालय में, कार्यस्थल और समाज में छोटी छोटी सकारात्मक पहल करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी है सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, भेदभाव से दूर रहना, प्रेम और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, क्योंकि शांति केवल सरकारों या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हम सभी की साझी जिम्मेदारी है।
0: ये सुनवाते हैं।

0: तो शमील, आगे का कार्यक्रम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर बात करते हैं, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। हर वर्ष 16 मई को पूरी दुनिया ये दिवस मनाती है, जिसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं। ये दिवस विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और सतत विकास में प्रकाश की भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है।
1: बिल्कुल सही बात है अमिता, हम ये कहेंगे कि रोशनी ज्ञान, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक भी है। जहाँ पर सूरज की किरणों से लेकर बिजली के बल्ब तक, मोबाइल स्क्रीन से लेकर चिकित्सा के उपकरण तक, जीवन में रोशनी हमारे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
0: और इस दिवस की शुरुआत यूनेस्को द्वारा 2018 में की गई थी। 16 मई की तारीख चुनने के पीछे एक खास कारण है, वो ये है कि इसी दिन 1960 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थियोडोर मेनन ने पहली बार सफल लेजर का प्रदर्शन किया था। लेजर तकनीक आज चिकित्सा, संचार, उद्योग और विज्ञान की क्रांति, विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव ला चुकी है। शमील,
1: बिल्कुल, इस साल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का जो मुख्य संदेश है वो अमित अपने श्रोताओं को बताते हैं, लाइट फॉर इनोवेशन, साथ ही हम कहेंगे इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी और ह्यूमन प्रोग्रेस, यानी नवाचार, सतत विकास और मानव प्रगति के लिए प्रकाश।
0: बिल्कुल, और ये संदेश हमें याद दिलाता है कि प्रकाश आधारित तकनीकें जैसे कि सौर ऊर्जा, फाइबर ऑप्टिकल और ऊर्जा सक्षम उपकरण भविष्य को अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, आज जब दुनिया ऊर्जा संकट और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, तब इस वक्त स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सौर ऊर्जा इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो प्रकृति से मिलने वाला स्वच्छ प्रकाश है।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की। और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज, जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, आकाशवाणी उदयपुर के FM और मीडियम वेव दोनों ही चैनल पर। एक साथ कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।

0: समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात से नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उन्होंने आबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। हॉर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: नीदरलैंड्स के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल राज उन्नति की बैठक में 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रोजेक्ट्स को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को अपने जिले की पीने के पानी से जुड़ी शिकायतों को तत्परता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके लिए परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर जल्द ई बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित शहरों में डिपो और चार्जिंग स्टेशन बनाने के काम को पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा सहित अन्य प्रमुख शहरों में ई बसें चलाई जाएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद जयपुर में इस महीने होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को स्थगित कर दिया गया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एनटीए ने पिछले 24 घंटों में देश भर में अनेक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मामले में अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से एसआई भर्ती 2021 परीक्षा 20 सितंबर को दोबारा होने जा रही है। इसके लिए अभ्यर्थी आज से 30 मई तक आवेदन में संशोधन कर सकेंगे।

0: आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पते को अपडेट कर सकेंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा में वही 3,83,097 अभ्यर्थी बैठ सकेंगे जो पहले दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इस परीक्षा में अवसर नहीं दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में आज से प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। 14 जून तक चलने वाले इस चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी। प्रगणक मकान की निर्माण सामग्री और सुविधाओं को लेकर 33 सवाल पूछेंगे। आर्थिक और सांख्यिकी निदेशक विनेश सिंघवी ने बताया कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुआ स्वयं गणना का काम कल पूरा हुआ। इसमें राज्य के लगभग 15 लाख परिवारों ने खुद अपनी सूचनाएं दर्ज कराने के विकल्प का उपयोग किया है। आज शनि जयंती है। इस अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा, अभिषेक, हवन और भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो रहे हैं। इस मौके पर 12 जिले के सीताबाड़ी में मेला भर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये मेला सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है।
1: आदिवासी लघु कुंभ के नाम से प्रसिद्ध सीताबाड़ी के धार्मिक मेले का शुभारंभ आज होगा। ये मेला सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जिसे सहरिया जनजाति का लघु कुंभ कहा जाता है। ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को आयोजित होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये वही पवित्र स्थान है जहाँ माता सीता ने निर्वासन के दौरान वाल्मीकि आश्रम में निवास किया था। ये मेला रामायण काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ 7 पवित्र कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूरज कुंड आदि हैं, जिनमें ज्येष्ठ अमावस्या को स्नान करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ समुदाय अपनी परंपराओं का जश्न मनाता है और उनके पारिवारिक विवाह भी होते हैं। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12।
0: आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। इसका उद्देश्य मॉनसून से पहले डेंगू रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना और मच्छरों के नियंत्रण के प्रयास करना है। ये बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए मच्छरों के नियंत्रण के विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर यह बीमारी गंभीर रूप ले सकती है।
2: विश्व डेंगू दिवस पर आप सभी से अपील है कि डेंगू से बचाव के लिए सजग रहें, अपने घर और आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर, गमले और टंकियों की नियमित सफाई करें, पूरी बांह के कपड़े पहने और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। याद रखें, डेंगू का इलाज नहीं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आइए मिलकर स्वच्छता अपनाएं और डेंगू मुक्त समाज बनाएं।
0: राज्य में कल से तापमान में बढ़ोतरी और हीट वेव का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिण पूर्वी भागों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। पिछले 2-3 दिन से कई हिस्सों में जारी आंधी बारिश से पारे में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। गर्मी के कल से फिर जोर पकड़ने के आसार हैं। इस बीच कल फलौदी और चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया। अन्य स्थानों पर पारा सामान्य के आसपास या उससे नीचे रिकॉर्ड हुआ। वहीं जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग तथा शेखावटी अंचल में कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रात चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के लक्ष्य को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 38 गेंद में 90 रन की पारी खेलने के लिए मिशेल मार्श को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही के लिए भारत का समर्थन दोहराया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार किया। जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में प्रगणक आज से घर घर जाकर मकान सूचीकरण और गणना

0: करेंगे। स्वगणना में राज्य के 15 लाख परिवारों ने अपनी सूचनाएं दर्ज की और राष्ट्रीय डेंगू दिवस आज जन जागरूकता के साथ ही मच्छरों के नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित और मेरे साथ हैं
2: शमील। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अमित।
1: बिल्कुल। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है विवाह संस्कारों में लोक गीतों की भूमिका। जैसा कि शमील हम जानते हैं, भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर हर चीज़ के लिए गाने और गीत बनाए जाते हैं। सुख में, दुख में, फसल लगाते समय, फसल काटते समय, हर एक चीज़ का गीत हमें मिल जाता है। और भारतीय संस्कृति में विवाह अगर हम देखें तो वो दो परिवारों का, दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि संस्कृति परंपराओं के मिलन का भी उत्सव है। इस विवाह संस्कारों को जीवंत और भावनात्मक बनाने के लिए लोक गीतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

0: दुख में, फसल लगाते समय, फसल काटते समय, हर एक चीज़ का गीत हमें मिल जाता है। और भारतीय संस्कृति में विवाह अगर हम देखें तो वो दो परिवारों का, दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि संस्कृति परंपराओं के मिलन का भी उत्सव है। इस विवाह संस्कारों को जीवंत और भावनात्मक बनाने के लिए लोक गीतों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: बिल्कुल सही बात है। विवाह की हर रस्म, जैसे कि हल्दी हो, मेहंदी हो, बारात का स्वागत हो, फेरे हो या विदाई समारोह, सभी के वक्त के लिए अलग अलग लोक गीत गाए जाते हैं। ये गीत मनोरंजन का साधन तो है ही, साथ ही इनमें समाज की भावनाएं, रिश्तों की मिठास और लोक जीवन की झलक भी दिखाई देती है।
0: भारत के अलग अलग राज्यों में विवाह गीतों की अपनी अलग पहचान है। राजस्थान की बात करें तो बन्ना बनी, बिहार और उत्तर प्रदेश में सोहर और गारी गीत, पंजाब में गिद्दा और सुहाग, बंगाल में मंगल गीत गाए जाते हैं। ये गीत पीढ़ियों से मौखिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ते आ रहे हैं।
1: बिल्कुल, लोक गीत विवाह समारोह में खुशी और अपनापन बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मित्र के महिलाएं जो हैं वो समूह में लोक गीत गाती हैं और वातावरण को एकदम उत्साहपूर्ण बना देती हैं। कई गीतों में हास्य और छोटी हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी होती है, जो कि रिश्तों में सहजता और प्रेम पैदा करती है। वहीं पर विदाई के गीत भावनात्मक रूप से होते हैं, जो कि बेटी को अपने घर से विदा करने के दर्द को भी व्यक्त करते हैं।
0: शमील, लोक गीतों की एक और खास बात होती है, और वो ये खास बात है कि वो अपने समाज की संस्कृति और भाषा को सहेज कर रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। बदलते समय में आधुनिक संगीत का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन आज भी विवाह समारोह में लोक गीत आत्मा की तरह नजर आते हैं।
1: बिल्कुल, ये कहा जा सकता है अमित के विवाह संस्कारों में लोक गीत केवल गीत नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और भावनात्मक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम है।

0: तो अमित, हम बात करते हैं अब आकाशवाणी के 90 वर्षों के सुनहरे सफर के बारे में, उस आवाज के बारे में जिसने दशकों से देश के हर कोने को जोड़े रखा, उस माध्यम की जिसने समाचार, संगीत, संस्कृति और जन जागरूकता को घर घर पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो की, जिसके 90 वर्षों का यह सफर भारतीय प्रसारण इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है।
1: बिल्कुल शमिल, और ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि हम इस स्वर्णिम अध्याय के कुछ चैप्टर्स लिखने में आकाशवाणी के साथ हैं। और आज जब दुनिया बहुत ही तेज़ी से डिजिटल माध्यमों की तरफ बढ़ रही है, तब भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, आत्मीयता के कारण लोगों के दिलों में खास स्थान रखती है। FM, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, मोबाइल ऐप के माध्यम से ये नई पीढ़ी तक भी अपनी पहुँच बना रही है। आकाशवाणी के ये 90 वर्ष किसी केवल एक संस्था की यात्रा नहीं है, बल्कि हमारे भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक चेतना का इतिहास है।

0: तो शमील, अगर हम बात करें ट्रैवल की, तो बहुत सारे लोग ट्रैवल पर इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि उन्हें लगता है बहुत खर्चीला है। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी बातें जिनके माध्यम से आप कम खर्च में या बजट फ्रेंडली ट्रैवल कर सकते हैं। तो देखा जाए तो घूमना फिरना हर किसी का सपना होता है, और घूमने से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसने घाट घाट का पानी पिया है, और ऐसी जो कहावतें हैं, मतलब जो ज़्यादा ट्रैवल करता है वो काफ़ी लोगों से मिलता है, तौर तरीके सीखता है, तो काफ़ी सुंदर चीज़ है। और नई जगह देखना, नए लोगों से मिलना, नए जीवन का अनुभव हमें और खूबसूरत बना देता है। लेकिन अक्सर हमें ये लगता है कि इस तरह से ट्रैवल करना काफ़ी महंगा है। तो आज क्या आपके पास कुछ टिप्स हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं?
1: बिल्कुल सही योजना और कुछ अच्छी टिप्स अपनाकर हम कम बजट में भी शानदार यात्रा कर सकते हैं। अमित, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कुछ आसान और बजट फ्रेंडली ट्रैवल टिप्स की बात करें तो सबसे पहली बात, पहले से योजना बनाना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ट्रेन से, बस से, फ्लाइट की टिकट पहले बुक करते हैं तो खर्च काफ़ी कम हो सकता है, और ऑफ सीजन में यात्रा करते हैं तो ये भी सस्ता और आरामदायक रहता है। महंगे होटलों की जगह हॉस्टल या होम स्टे चुनें तो आपका जो है बजट वो कम हो सकता है।
0: बिल्कुल। और अगली बात करें तो आप कोशिश करें टैक्सी लेने की बजाय प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की जगह आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, जैसे कि मेट्रो हो गई, बस हो गई, या फिर जो अभी चल रहा है आप कॉमन एक टैक्सी भी ले सकते हैं, 3-4 लोग इकट्ठे होके, तो वो आपका जो फेयर है वो स्प्लिट हो जाएगा सभी में। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें देख भी सकते हैं।
1: बिल्कुल। खाने पीने में बहुत खर्च ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट की जगह आप स्थानीय स्ट्रीट फूड या छोटे ढाबों का भी स्वाद लें, इससे खर्च में कटौती होगी और उससे जगह का जो असली स्वाद है वो भी आपको मिल पाएगा।
0: बिल्कुल। और अगर आप बजट फ्रेंडली ट्रैवल की बात करें तो अपना जो बैकपैक है या आपका जो सामान है उसको जितना हल्का रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और कोशिश करें कि यात्रा के दौरान आप अनुभवों को महसूस करें, ज़्यादा

0: फोटो लेने के चक्कर में आप ज़्यादा चीज़ें नहीं देख पाएंगे, तो थोड़ा सा आप इस तरह से घूम सकते हैं और डिजिटल पेमेंट के साथ साथ थोड़ा सा कैश भी अपने साथ रखें।
1: बिल्कुल, तो इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो कम खर्च में आप ट्रैवल कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा महसूस कर पाएंगे। अच्छा, ट्रैवलिंग करते हैं तो अमित, हमें एक चीज़ अपने श्रोताओं को जरूर बतानी होगी कि पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति का सम्मान हमेशा करें, साफ सफाई बनाए रखें और जिम्मेदार जो नागरिक है वो भी आपका बना रखना इसमें बेहद ज़रूरी है। अच्छा, हम बात करते हैं आज के दिन की, तो आज जो है अमित वो है राष्ट्रीय डेंगू दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो आज के दिन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस को मनाने का उद्देश्य यही होता है कि लोग डेंगू बुखार के लक्षण, इसके बचाव के उपाय और मच्छरों को पनपने के रोकने के लिए जितने भी उपाय हैं वो ज़रूर करें। मानसून के मौसम से पहले डेंगू के प्रकोप को रोकना और आम जनता में इसके लिए सतर्कता बढ़ाना आज के दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, हम चाहते हैं और भी बातें करना, लेकिन अब वक्त का इशारा है कार्यक्रम से विदा लेने का। आज इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त शमील
0: और मैं अमित,
1: दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

गुड मॉर्निंग, यह है 101.9 एफएम मॉर्निंग लोकल विंडो। आप सभी का स्वागत। आज मैं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त आरजे शमील। पहले बताएं क्या खास आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉर्निंग लोकल विंडो में। कुछ ही पलों में नए फिल्मी ताराने आप सुनेंगे। युगल गीत इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे सुबह 10 बजे से। शीर्ष गीत यह कार्यक्रम हम अब तक पहुंचाएंगे 11 बजे। और राजस्थानी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गोखड़ा आप सुनेंगे 11:30 पर।

0: धुरंधर इस फिल्म का ये तराना भी आपने सुना। अब बात करते हैं मौसम की, और मौसम में देखो तो लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त तेज़ गर्मी का एहसास है। कल पारे में थोड़ी सी कमी हुई, फिर भी तेज़ धूप जो है वो सताती रही। कल का अधिकतम तापमान रहा 41.1 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर न्यूनतम तापमान रहा 25.5 डिग्री सेल्सियस। तेज़ गर्मी का आलम यह है कि दिन के समय सड़कों पर सन्नाटा है, तेज़ धूप है, सभी तंग है, लू का असर चल रहा है। इसलिए जब भी घर के बाहर निकलें तो सावधानी करके निकलें, अपना और अपने का ध्यान रखें। कार्यक्रम में अगला गीत तो आपको सुनवाते हैं, उससे पहले यह संदेश।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारत

व्यक्तियों के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें,
4: मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

नए फिल्मी तराने भी आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम तराना आइए अब आपको सुनवाते हैं, मेट्रो इन दिनों, इस फिल्म का ये गीत आपके अपने रेडियो सेट पर। उससे पहले ये संदेश,

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: RBI कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
8: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
7: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
8: तो फिर सही नंबर,
7: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
8: आपने तो बचा लिया दीदी।
7: काम से नहीं।
1: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

इस गीत के साथ ही नए फिल्मी गीतों का ये सफ़र बस यहीं संपन्न होता है। ये है 101.9 FM और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युगल गीत। इस कार्यक्रम में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम मोहब्बतें। उदित नारायण और अलका लता मंगेशकर की आवाज़ों में ये गीत। संगीत जतिन ललित का।

ये गीत अभी आपने सुना मोहब्बत है फिल्म का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं युगल गीत। इस कार्यक्रम का अगला तराना हम आपको सुनवा रहे हैं रिफ्यूजी। इस फिल्म का ये गीत आइए अब सुनते हैं, आवाज़ें अलका याग्निक और सोनू निगम की। गीतकार जावेद अख्तर का लिखा ये गीत। इस गीत को अपने संगीत से सजाया है संगीतकार अनु मलिक ने।

युगल गीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, सलाम नमस्ते। इस फिल्म का गीत आइए आपको सुनवाते हैं। आवाज़ है शान और गायत्री अय्यर की। इस गीत को लिखा है जयदीप सहानी ने, संगीत विशाल शेखर का। सुनवाते हैं आपको ये गीत।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: का स्वागत
3: है। तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
2: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
2: देखा
3: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
3: फ्री वाईफाई है ना?
2: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
3: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: हो गया इंतजाम।
7: किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
8: RBI कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

अभी आपने सुना कार्यक्रम, आप सुन रहे हैं युगल गीत। कार्यक्रम में अगला तराना आइए आप आपको सुनवाते हैं नरसिम्हा। इस फिल्म का ये गीत आइए आप सुनते हैं। ये गीत पिक्चराइज किया गया है अभिनेत्री उर्मिला मातोड़कर और रवि बहल पर, आवाज़ें अमित कुमार और अलका याग्निक की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुनते हैं ये फिल्मी तराना।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की चार दरें लगती हैं। ₹1,000 से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12%।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ।
3: हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं युगल गीत। इस कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नायक फिल्म से, आवाजें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है संगीतकार A.R. रहमान ने। सुनते हैं ये गीत। अभिनेता अनिल कपूर, अभिनेत्री रानी मुखर्जी पर पिक्चराइज ये गीत।

युगल गीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फूल और कांटे, इस फिल्म का ये गीत, आवाज अलका याग्निक और कुमार सानू के संगीत, नदीम श्रवण का।

पोलर काटे। इस फिल्म का ये तराना भी आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं युगल गीत। इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम तराना आपके अपने रेडियो सेट पर। पीके, इस फिल्म का ये गीत।

युगल गीत, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये है 101.9 FM। और आइए, अब वक्त चला है उस कार्यक्रम का जिसका आप बेहद बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, कार्यक्रम शीर्षक गीत। और आज इस कार्यक्रम में जो शीर्षक हम ले रहे हैं वो है जो कि हम चाहते हैं आपकी और हमारी ज़िंदगी में हमेशा शामिल रहें, यानी खुशियाँ। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही हों, कभी कभी खुशियों के साथ छोटी मोटी मुसीबतें या परेशानियां भी आती हैं, गम भी आते हैं, लेकिन जिंदगी इसी का तो नाम है। कितनी भी मुसीबत हो, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आप खुशियों को फिर पा लेते हैं।

बात हम खुशियों की कर रहे हैं आज। कई बार कहते हैं कि जो खुशी है वो आपको हर जगह नहीं मिल जाती, आप उसे पैसे से खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर आप विनम्र हैं, आप दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में सक्षम हैं, कोई ऐसी चीज़ें आप करते हैं जिससे आपको दिल से खुशी मिलती है, तो वो भी आपकी खुशियों में इजाफा कर लेती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरक्रिया लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: कार्यक्रम आप सुन रहे हैं शीर्षक है गीत और आज हमारा शीर्षक है खुशियां। खुशियां को पाने के कई बार बड़े छोटे छोटे तरीके होते हैं जो बड़े ही काम के होते हैं। जैसे आप शुक्रगुजार रहे

यानी जो मिला है उसमें संतुष्ट रहें, तो आपको खुशी महसूस होगी, आप खुश रहेंगे। आपके जो भी रिश्ते हैं उनको अहमियत दें, चेहरे पर खुशी बनी रहेगी। दूसरों की मदद करें, हमेशा खुशी देता है। आपका अपना जो पैशन है, जो आपकी हॉबी है, आपका शौक है, उसको वक्त ज़रूर दें।

तो ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं शीर्षक गीत, और आज का जो हमारा शीर्षक है वो है खुशियाँ। और अब वक्त है इस कार्यक्रम के अगले और अंतिम तराने का। साथ ही ये बता दें कि इस कार्यक्रम से मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त आरजे शमील को दीजिए इजाज़त इस गीत के साथ, यही कहते हुए कि खुशियाँ बटोर लो और खूब सारी खुशियाँ बटोर लो।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे लोकल विंडो कार्यक्रम FM 106.9 MHz पर ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र FM रेडियो लीक सिटी। सवेरे के 11:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं राजस्थान की मिट्टी की खुशबू से सराबोर राजस्थानी रोगी दवा कार्यक्रम खूब है।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करें।

वैसा कि थारी आख्या रो जादू ऐसो है कि दिल ने हर पल घायल करे सा। मारो मन तो बसता नहीं, हर सांस में याद करे सा।

केवेसा के मारे जिंदगी रो सबसे सुंदर पल जदि केवे जदि थरु हाथ मारा हाथ में हो वैसा बाकी दुनिया भूल जाओ सा बस थारो प्यार साथ में हो वैसा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है मिठाई?
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: केविसा की भारो प्यार कोई शब्द नहीं, यो तो दिल रो एहसास है, थारो साथ मिल जावे जदी तो हर दिन भारो खास है।

छोटा का कार्यक्रम बस यहीं तक। ये आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारती केंद्र एफएम रेडियो लेक सिटी। दिन के 12 बजने को है। कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम

0: की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: आनंद बख्श का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।
1: जब हम तुमको देखे हैं रिठेला, जब जब हम तुमको देखे हैं रिठेला, मन मोर

ऐसा काहे को होवत है री लैला, ऐसा काहे को होवत है री लैला, मनमो

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों के महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

नमस्कार। मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर, जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो मैं बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफ़ी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है, हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो

फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सब ने रखी हैं, और बहुत सारे ऐसी भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिया की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है। वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज़ थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें ज़रूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं, बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट, रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना, बताइए किनके स्वरों में ये गाना है।

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीज़ें और भी जलती थीं, और कई चीज़ों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं

तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्क़त करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी, तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें

होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है, जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफ़ी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नज़र आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई, कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं, पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती, कलियां महकती, फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए, और हाँ ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी?

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज़, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैम्प की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है। और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की, फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे। शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूं तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है, मगर मेरी किस्मत देख जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था। आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का ज़माना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन हैं। आज हमें अपना सुरीला सफ़र गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है, और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो, अगर सूरज दादा ना होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, ना पेड़ पौधे होते, ना हम होते, ना पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर, और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के ज़माने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी। तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और

0: आँच को साफ करना पड़ता था। बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे। आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे, जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है,

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया, और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: है उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से। ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना,

0: तुम्हें को पाता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ।
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहाँ, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना, उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं, बताइए हमें गाना मंजिल शब्द पर।

गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनिता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जय भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बच सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर्मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर्मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई, या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया। याद हो तो बताएं। और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी, नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप,
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी, पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो, क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला, एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो गाना, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज़ है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही हैं ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाज़ें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज़्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

कई संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाज़ों में। बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज़ एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया है किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्म पत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया, यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाज़त देनी है। तो सुरीला सफ़र कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद लोकप्रिय उत्सव।

गंगा न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल न सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की ज़रूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवनकाल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी।

बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो दीजिए आज की

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव

0: चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। ये भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: If you heard me earlier,
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
5: ज्योग्राफी और हिस्ट्री और
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी

0: बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
0: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए AI के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अली फली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व

0: देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाज़ों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया। वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने
1: बिल्कुल।
0: मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो हे बोलो।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहे गीत,
2: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनांद गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है, सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

गीत में छुपा गुनगुनाता हुआ ये राज, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना एम जी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं इस गाने को सुनना चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना, और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: का याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मनचाहे गीत,
2: चाहे यह है विविध भारती।
3: नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: ओ, इस हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता ना करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज, ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को। ये
2: नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे, ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
3: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पुरु वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
3: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
3: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
3: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहाँ पधार कर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
3: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
3: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
3: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
3: आप आश्रम में पधारें राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें

0: विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे, ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं। क्या रूप, क्या सौंदर्य है! आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे, समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी हैं और प्रसन्न भी होती हैं। समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
2: अरे अनुसुईया, ओह, जरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए, मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
2: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूँ?
3: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
2: परिहास ना कर।
3: अच्छा नहीं करती, बता।
2: देख, वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं,
3: तेरी तरह
2: फिर परिहास।
3: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
2: हाँ बता।
3: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
2: थत, तेरा तो सिर घूम गया है।
3: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
2: अच्छा,
3: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
4: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
2: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
5: ओह, अरे ये भौरा कहां से आ गया?
2: अरे
5: ओह, अरे भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। ओह, अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग, अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
3: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
4: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
3: हाँ, वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
2: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए। पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
3: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
4: आपके आते ही भाग भी गया।
3: आप खड़े क्यों हैं आर्य? विराजी ना,
4: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
0: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
3: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए।

0: कार्य?
1: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
2: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
0: ना, तुम लोग बैठो, मैं भी। अब बैठ भी जा।
3: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
0: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
1: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?
2: अब क्या बताऊं इन्हें? मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूँ। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूँ।
0: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
2: और ही ढंग से?
1: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंप कर वे आपको कृतार्थ कर देते। क्यों शकुंतला,
3: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
2: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
0: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
1: बहुत मीठा है इसका गला,
0: करती रहती है सबका भला,
1: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
0: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है।
1: कुलपति कण्व की सबसे लाडली बिटिया है।
2: किंतु कुलपति कण्व तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
0: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य। वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
2: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
1: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
2: फिर
1: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया। मेनका के उस मादक रूप को देखकर
2: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
0: क्या आर्य?
2: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
0: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
3: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
0: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
1: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
2: वृक्षों को सींचने का ऋण?
0: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
1: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
2: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
0: आप
2: ये लीजिए
0: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
1: आपके पास ये अंगूठी?
2: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
0: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
1: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
2: मैं आभारी हूँ।
4: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
2: ओह, लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
0: हे भगवान, अब क्या होगा?

0: क्योंकि यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
1: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
2: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
1: चलो शकुंतला। चलो
2: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं, किंतु तो मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

0: हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो। प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो। भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना। गधा, घोड़ा, बैल, मक्खी, मच्छर, कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है। अब उसके प्रेमी रूप को भी छेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है! आंखें फोड़ कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बह रहे हैं।
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: तुम कैसे समझोगे? अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा।
0: हे भगवान, तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेष क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हाँ, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव्य।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहाँ नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यार।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक,
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
0: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
0: ठीक है महाराज दुष्यंत।

0: के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुख ही सुख है।
1: और हाँ, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ, यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?
1: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
0: जो आज्ञा महाराज।
1: जाओ युवराज।

0: प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अनसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से
2: तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवता, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
0: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं, तभी से
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं।
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?

0: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें कल के

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार, मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
1: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
2: जरूर,
1: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशंस आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो मंचीय प्रस्तुति?
2: अन्ना जी के सिवाय, वसंत देसाई के सिवाय।
1: अच्छा,
2: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया।
1: अच्छा,
2: मैंने आज
1: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
2: अन्ना जी के गानों का शो करता भुला है ना बने करके,
1: जी जी,
2: उनका नाम था।
1: हाँ हाँ।
2: तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग।
1: जी,
2: तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के।
1: जी, जी, जी।
2: यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
1: हाँ, हाँ।
2: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ,
1: हाँ।
2: तो आपके गले में नहीं आई।
1: हाँ।
2: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना,
1: हाँ।
2: ऐसे गाओ चलेगा। अन्ना जी नहीं,
1: हाँ।
2: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं, तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
1: अन्ना जी मतलब
2: श्री रामचंद्र जी। तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
1: अच्छा।
2: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
1: अच्छा।
2: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दिया, फिर वो लोग चुप बैठ गए।
1: अच्छा।
2: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
1: हाँ,
2: नाम
1: हाँ।
2: नहीं बताऊंगी। तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
1: जी, जी,
2: वो
1: जी।
2: पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एम वी में।
1: अच्छा।
2: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
1: Okay.
2: एक समय काली पास सुर है तो,
1: हाँ,
2: खर्च के जो सुर होते हैं,
1: हाँ,
2: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने वो ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब। तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना, ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल?
1: हाँ।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

0: वो नहीं, तू
1: हाँ
0: घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर
1: हाँ
0: तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना तू। वो
1: जी
0: किसी के भी सुन, जो उनको
1: अच्छा
0: चाहिए चाहिए बस।
1: जी,
0: ये दोनों में फर्क था
1: हाँ
0: बसंत जी और
1: हाँ
0: अन्ना जी
1: जी
0: में।
1: जी अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम
0: जी
1: याद करें
0: जी
1: तो इतनी सारी कंपोजिशंस है,
0: बहुत
1: उसमें से
0: बहुत
1: कौन सा कंपोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: प्रमिला जी, आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी।
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ, तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसलिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ। तो समझ में आता है।
1: हाँ।
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं, वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: हाँ। अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, वसंत जी का म्यूजिक था
0: जी।
1: और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा।
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ।
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया।
0: अच्छा।
1: लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से।
0: अच्छा।
1: तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का।
0: अच्छा।
1: और कुछ करने का नहीं, मतलब अच्छा आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा। आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफ कोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, वो नैयर साहब का,
1: नैयर साहब का,
0: क्या बात क्या बात।
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी।
0: हाँ।
1: लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ
0: जी,
1: पुराना
0: जी,
1: कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ, दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर,
0: हाँ, हाँ,
1: तो लोग एकदम ऐसे अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा,
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला हम वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं वो मेरी है तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहां के लोकल लोग बहुत खुश होते थे, उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना तो मस्त उनको मजा आता था सुनने में। उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे, बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रे का फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
1: था
0: अच्छा, कटआउट
1: बहुत बड़ा कटआउट बनाया था, तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा था, पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी।
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वो ही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही
0: घूम रहा
1: ऐसा
0: अच्छा,
1: लगता
0: अच्छा,
1: था
0: अच्छा।
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको लोगों को ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ, मेरी तो जहाँ तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, तो बोले नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा।
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा, लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते सामने ऐसा गाना, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं, हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं एक साथ लगो पाठ पांच छह शांत धीमे गीत भी लोग हा करके सामने सामने ये करते हैं,
0: अच्छा, अच्छा।
1: फिर दो गाने के बाद एक रात को डा सफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप

0: समझना चाहिए, वो सिखा के नहीं आती बात।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और जहाँ तक हम पहली बार भी गए किसी शहर में, किसी गांव में, छोटे से गांव में भी,
1: जी, जी।
0: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस प्रकार के गाने चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता है।
1: और भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
0: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे।
1: अच्छा,
0: ये है अच्छा लगता है, क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं, तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद भी नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे। पहला पमिला भी अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब पूछते थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: वो रफी साहब का गाना, एक डुगाना है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: वो आगे आके उनको उसको एक बोलते ना, मैं बताती हूँ आपको।
1: हाँ।
0: रफी साहब पहले शुरू करते थे,
1: जी।

दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक।
0: अच्छा ना।
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और हाँ, स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है,
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है
0: जी, जी,
1: फिर भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, हाँ, ये होता हाँ, है हाँ, ये ठपका दोष आता है, इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी, मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे दाद मिलती थी लोगों की, तो मैं खुश थी, मैं उसमें ही खुश थी
0: जी, जी, जी।
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ से बहुत अच्छा चला और नाम लेने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया कि ऐसा होना चाहिए ऑर्केस्ट्रा। एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धंगर धिंगा ये वो डांस वो ये सब नहीं, अच्छी तरह से भी करो तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने मोरक्ष को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो बस वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी है, दूसरा कोई कहने की जरूरत ही नहीं है।
0: शो में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता
1: हो, शालीनता हो
0: तो जरूर, सवाल ही नहीं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: बहुत सुंदर होता है, क्या बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग है और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनके कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी ज्यादा नाम मुझे याद नहीं।
0: प्राइवेट शोज भी होते,
1: प्राइवेट शोज भी होते थे,
0: कंपनी के लिए
1: होते
0: या
1: थे, कंपनी के लिए किसी कंपनी के लिए बहुत शो हुए।
0: अच्छा।
1: मतलब बहुत सारी ठाणा इंडस्ट्रियल बहुत सारी कंपनी उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे।
0: अच्छा।
1: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट किया।
0: जी जी प्रमिला जी, अलग अलग गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया, मजा आया? सबका गाने में अलग, उनका अपना ढंग होता है और
1: सही बात
0: विशेषता होती है, फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हुए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी, शमशाद बेगम जी के प्रस्तुत, वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशन गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
1: किन कंपोजिशंस
0: में ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा।
1: अभी आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है।
0: अच्छा।
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें अगर जो म्यूजिक भी था बीच का, वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा, इस तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है, ऐसा चिल्लाते थे जरा भी। मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ, मेरा अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है, उन्होंने शुरुआत करियर की मेरे शो से की थी।
0: अच्छा।
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचने गाने, तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और सुखमय सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो नंदूरवार करके गांव है छोटा सा धुलिया के पास, तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो जैसे आते हैं, आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया। मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको क्लासिकल का ज्ञान था।

0: नहीं, वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो आमिर खान साहब की गाई हुई है वो तो। लेकिन रफी साहब गा नहीं सकते ऐसा नहीं था,
1: हाँ
0: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए हैं
1: जी
0: मुकरी,
1: जी
0: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए,
1: तो श्रोताओं की
0: मैं
1: समझ में आ
0: पुराने जो
1: जाता है।
0: गाने
1: जी जी
0: बराबर उनको ए
1: बिल्कुल,
0: करके चिल्ला देते वहां
1: हाँ
0: से।
1: हाँ क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार
0: हाँ,
1: सुना है,
0: वो
1: तो
0: उनके
1: उन्हें
0: दिमाग
1: वैसा का
0: में
1: वैसा वो सुनना
0: वैसा के
1: चाहते
0: वैसा।
1: हैं।
0: अभी ये
1: जी
0: गाना है तो थोड़ा सा चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टर टर
1: हाँ
0: टर, वो
1: हाँ
0: आना ही चाहिए उधर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना। इतना
1: जी
0: म्यूजिक
1: जी जी
0: चिपक
1: जी
0: के चलता था
1: जी
0: शब्दों को।
1: जी ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं,
0: जी
1: उनकी नज़र से एक
0: हाँ,
1: सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
0: मिलता
1: में,
0: नहीं है, सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके
0: बजा करते
1: अपना
0: थे।
1: उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल,
1: हाँ
0: बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिस तरह से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से।
1: जी
0: इसका मैं, अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ
1: जी
0: कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे, वही। और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए,
1: जी
0: नहीं तो आज ये ढोलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको
1: हाँ
0: गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं
1: सिंह,
0: होता,
1: हाँ
0: अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था
1: हाँ
0: सालों साल तक।
1: जी
0: अभी मैंने 2023 को एक शो किया,
1: हाँ
0: बहुत सारे लोगों ने मुझे क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल
1: हाँ
0: से,
1: हाँ हाँ
0: तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
1: अच्छा
0: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से एकदम से जो बदली हो जाएगा
1: जी जी
0: नाजी, तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का,
1: जी
0: उसमें एक रिहर्सल
1: हाँ
0: और शो
1: जी
0: बस, दूसरी रिहर्सल नहीं।
1: ओ
0: हाँ, एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो बात।
1: क्या बात,
0: जो तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे
1: हाँ
0: म्यूजिशियंस,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: संजय मराठे करके है,
1: जी
0: तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई
1: जी
0: और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड, उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ मुझे शो करना है, तो
1: अच्छा
0: ज़्यादा रिहर्सल की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन
1: हाँ
0: कोई अगर नया सिंगर होता है तो उसके लिए तो ज़रूरत होती थी ना
1: बिल्कुल
0: रिहर्सल,
1: बिल्कुल
0: तो एक रिहर्सल और शो,
1: जी जी
0: लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको,
1: जी
0: शो को।
1: जी आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मन के बोलूंगी, विनय मन के,
1: विनय
0: विनय
1: मांडके,
0: मन के।
1: जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि
0: और
1: बहुत से विज्ञापनों में विनय मांडके जी की आवाज हम सुनते हैं,
0: जी,
1: तो
0: उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ, बहुत
1: हाँ
0: सारे
1: जी
0: जिंगल
1: जी
0: गाए
1: जी
0: उसने, और
1: अच्छा
0: स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज
1: हाँ
0: परफॉर्मर होता है,
1: जी
0: वो था बहुत सारे हल्के बुल्के बातें भी करने का बीच में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: मतलब ऐसे किसी को
1: हाँ
0: तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे
1: जी
0: नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो
1: अच्छा
0: ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा।
1: हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा के।
1: बहुत अच्छे
0: फिर
1: सिंगर हैं
0: एक गाना था अन्ना
1: जी,
0: जी का,
1: हाँ हाँ
0: भोली सूरत दिल के खोटे,
1: हाँ
0: नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी। फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली। तो ये
1: हाँ
0: बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा
1: ओह
0: खोटी वाली, कुछ भी। मतलब
1: अच्छा
0: वो ठीक था, लोगों को भी
1: अच्छा
0: मजा आता
1: मस्ती के
0: था,
1: मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा
0: मूड में।
1: रहते थे वो।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक थे,
1: जी, जी।
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता छो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो, किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाना था उसका। बस सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी,
0: था।
1: जी, जी।
0: अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गान सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं जिन्हें, उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर
1: जी,
0: साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं पड़वा के शो में, वसंतदा पाटिल, शंकरराव चौहान और जो कुछ, विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था और तो मैं किसी को बुलाती थी, या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी,
1: हाँ।
0: प्रभु कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली। सामने दर्शन हुआ साक्षात, तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके, आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे, लेकिन वो भारगाव जाने वाली थी,
1: अच्छा,
0: नहीं
1: अच्छा।
0: आई। फिर मुझे उन्होंने पूछते है कि कसं भाऊ तुम्ही असे प्रोग्राम करता है, एवढे प्रवास करायचा, परत गायला उभं राहायचं कसं करता, म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है, हो जाता है। मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा मालूम
1: था उनको। क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने अलग अलग गाने उनके गाए
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियाँ आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो लावणी
1: पाड़ाला
0: है,
1: पिकला
0: पाड़ाला पिकला
1: अम्बा,
0: आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या उसका शो में
1: हाँ
0: शामिल होना बहुत
1: शामिल होना
0: जरूरी होता
1: बहुत ही
0: था।
1: जरूरी था, मस्ट,
0: हाँ,
1: और
0: तो
1: भी
0: एक तो पहले हम उसकी एक झलक सुनेंगे
1: सेकंड, जरूर
0: और
1: जरूर
0: फिर लावणी की भी बात करेंगे।

0: पाऊन जरा थांबा हो पाऊन जरा थांबा आर घे पडाला पिकलाय आंबा आला बाई पडाला पिकलाय आंबा हो नीट बघ पडाला पिकलाय आंबा कुछ अलग अलग वैरायटी होती थी पर फिर ये आंबा ये गाना तो वंस मोर होता ही था
1: जी जी
0: तो मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि बहुत थक गई हूँ तो पड़ाल पिकला मैं बोलूंगी अम्बा आप बोलेंगे तो वो लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर अरे क्या कर रहे हो आप अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए इतना जोर से फिर जोर से एकदम जो जोर लगा के अम्बा आता था सामने से मजा आता था उनको भी थोड़ा सा हमने भी कुछ किया उनको भी शायद
1: प्रमिला जी आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहाँ का कोई गाना आप उन्हें जरूर सुनाया करती
0: गाती थी हाँ।
1: और अपने लिस्ट में
0: कनाडा गाना सुनाती हूँ
1: जी जी जरूर
0: मेरी
1: जरूर।
0: लड़की बैठे ना तो खुश हो जाएंगे

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब
1: कोशिश
0: गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं कि भाई
1: की।
0: क्या
1: अरे बाप रे,
0: हमारा नसीब।
1: गुजराती तो वही गाना था।
0: हाँ,

0: गाना बहुत दरे और उधर गुजरात के एक मैं एक खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे।
1: हाँ।
0: तो उधर एक एरिया है सूरत में,
1: वहां
0: जब सब काठियावाड़ी ने वो झबला पहनते हैं,
1: हाँ,
0: शॉर्ट,
1: हाँ,
0: वो पहनवाला बैठे थे, तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाँव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाँव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए। ए प्रेमिला बेन, नव पिक्चर ना गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी.
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर।
1: ओ।
0: इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने

0: लगे
1: जी
0: उसमें,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम में भी जवाब देना या कुछ
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: बोलना।
1: 1975 में जो शुरुआत हुई, उस वक्त पहली
0: जी
1: बार आपने जो गानों की फहरिस्त बनाई
0: हाँ
1: होगी,
0: जी
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी हाँ
1: होगी,
0: जी
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी।
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं,
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे
1: हाँ
0: इधर
1: हाँ
0: उधर,
1: हाँ
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरे पसंद के या लोगों की पसंद के
1: हाँ
0: पहले से थे
1: अच्छा
0: उसमें बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के
1: हाँ
0: लिए,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली,
1: जी
0: निगाहें मिलाने को जी चाहता
1: जी
0: है, पे पाड़ा ला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो
1: हाँ
0: लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी, उनके
1: अच्छा
0: गाने अलग अलग थे लेकिन नहीं वो वही गाने चाहिए लोगों
1: वाह वाह
0: को।
1: वाह वाह,
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
0: हाँ
1: करके।
0: जी हाँ जी
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए, तो वो कौन सा
0: ओहो
1: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये करम है कि आज आप यहाँ पधारी।
1: बिल्कुल, और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी उदयपुर की रेडियो लिंक सिटी से। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं इवनिंग लोकल विंडो की कार्यक्रम। कुछ ही देर में हम प्रसारित करेंगे युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसका प्रसारण हम हमारे मीडियम वेव चैनल से करेंगे।

0: नमस्कार श्रोताओं, इस खूबसूरत शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दिव्या।
1: और मैं हूं मानस। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर कई खास प्रस्तुतियां।
0: दोस्तों, हर दिन अपने साथ नई सोच, नए अनुभव और इतिहास के कुछ अनमोल पल लेकर आता है।
1: और जब बात हो एक साथ सीखने और सुनने और कुछ यादगार पलों को महसूस करने की, तो कार्यक्रम और भी खास बन जाता है।
0: आज की इस शाम में हम बात करेंगे उन घटनाओं की जिन्होंने इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाई, साथ ही जानेंगे कुछ रोचक और प्रेरणादायक बातें।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम में होगा उत्साह, नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा का सुंदर संगम।
0: सुनते हैं युवाणी, क्योंकि यहाँ हर आवाज में बसती है भारत की पहचान।

0: भारत की खूबसूरती सिर्फ उसके बड़े शहरों में नहीं बल्कि उन शांत और प्राकृतिक जगहों में भी बसती है जहाँ पहाड़, बादल, हरियाली और संस्कृति मिलकर एक अलग ही दुनिया बना देते हैं। हमारे देश में कुछ शहर और इलाके ऐसे हैं जो आपकी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और शांति के लिए खास पहचान रखते हैं। ऐसी जगहों पर जाकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। आज शहर की बात में हम आपको ले चलेंगे भारत के खूबसूरत उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर, जहाँ बसे हैं मनमोहक शहर और गांव गंगटोक, पाक्योंग, जोरेथोंग।
1: जी दोस्तों, आज के हम कार्यक्रम में सबसे पहले बात करने वाले हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटोक शहर की।
0: यह शहर हिमालय की पहाड़ियों में लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, जो कि अपनी नेचुरल ब्यूटी, साफ सफाई और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।
1: गैंगटोक की खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ से दुनिया की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, उसका भी हमें सुंदर सा व्यू दिखाई देता है। साथ ही गैंगटोक का जो टूरिज्म है, बौद्ध कल्चर है, एडवेंचर गेम्स है, वो भी यहाँ का मेन सेंटर है।
0: बिल्कुल, शहर की रोड्स ना केवल साफ़ सुथरी मानी जाती है बल्कि काफ़ी सिस्टमेटिक और अलाइन भी मानी जाती है। यहाँ पर नेपाल, भूटान और लेपचा कल्चर का भी सुंदर मिक्सचर देखने को मिलता है।
1: टूरिज्म स्पॉट की बात करें तो MC मार्ग, जो कि यहाँ का पॉपुलर मार्केट है और घूमने की जगह भी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर गाड़ियाँ भी नहीं चलती, इसलिए आप आराम से घूम भी सकते हैं।
0: इसके अलावा रूमटेक मोनेस्ट्री भी, जो जो कि फेमस बौद्ध मठ है, इसे तिब्बतियन बौद्ध कल्चर का इम्पोर्टेंट माना जाता है और यहीं से लगभग 40 किलोमीटर दूर खूबसूरत हिमालयी झील स्थित है।
1: बात करें मौसम की तो गर्मियों में यहाँ मौसम काफ़ी सुहावना रहता है और सर्दियों में काफ़ी ठंड पड़ती है। आसपास के एरिया में बर्फबारी भी होती है, इसलिए घूमने का जो सबसे अच्छा समय है वो मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर माना जाता है।
0: गंगटोक के बाद आगे बात करेंगे सिक्किम के सुंदर पहाड़ी शहर पाक्योंग की, जो सिक्किम के पूर्व में स्थित है और अपने आधुनिक एयरपोर्ट के लिए जाना जाता है।
1: गैंगटोक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह शहर भी काफ़ी सुंदर और शांत है, हमेशा पहाड़ी हरियाली और बादलों से घिरा रहता है।
0: पाक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, जिसका उद्घाटन 2018 में हुआ और यह भारत के सबसे ऊंचे एयरपोर्ट में से एक माना जाता है।
1: यहाँ आसपास के पहाड़ी गांव और नेचुरल व्यू काफ़ी सुंदर है, जहाँ पर आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो।
0: बिल्कुल, मोमोज, थुक्पा और जो सिक्किम की ट्रेडिशनल डिशेस है वो भी यहाँ काफ़ी टेस्टी है।
1: यहाँ के एयरपोर्ट का जो निर्माण है वो काफ़ी कठिन पहाड़ी इलाके में किया गया है, इसलिए इंजीनियरिंग का जो सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक माना जाता है इसे, क्योंकि ऐसे ऊंचाई वाले इलाके में जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मुश्किल होता है।
0: और इसीलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन अपने आप में एक अलग ही टास्क है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं और ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं तो आपको यह शहर बहुत पसंद आएगा।
1: अब इस सिक्किम से चलते हैं साउथ सिक्किम के शहर जोरथोंग के बाद पास में, जो कि यह शहर बसा है रंगीत नदी के किनारे। यह शहर सिक्किम में एज ए बिजनेस और टूरिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है।
0: बिल्कुल, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच बिजनेस कॉन्टैक्ट को मेन सेंटर है, बिजनेस का मेन सेंटर होते हुए भी काफ़ी शांत माना जाता है ये।
1: पहाड़, हरियाली और नदियों का एक साथ व्यू बड़ा ही सुंदर देखने को मिलता है। जोरेथांग बाज़ार यहाँ के जो लोकल परचेसिंग है और कल्चरल प्रोग्राम्स है उसके लिए काफ़ी मशहूर है।
0: बिल्कुल, रंगीत रिवर शहर की सुंदरता और बढ़ाती है। इसके आसपास का जो एरिया है वह भी नेचुरल लवर्स को काफ़ी पसंद आता है।
1: यहाँ का साल में जो एक बार लगने वाला जोरेथांग माघ मेला होता है वो भी काफ़ी खास है। इसमें हमें कल्चरल प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं, गेम्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ बिजनेस से जुड़ी सभी चीज़ें देखने को एक साथ मिलती है।
0: बिल्कुल, मौसम यहाँ गर्मी में हल्का गर्म और सुहावना रहता है। मानसून में बारिश अच्छी होती है और सर्दियों में ठंड आरामदायक होती है, इसलिए यहाँ ऑल सीजन शहर है।

तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम सिक्किम शहर के बारे में। तो 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बना। इससे पहले सिक्किम एक राजशाही राज्य था, जहाँ चोग्याल नामक राजा शासक करते थे। मनोरंजन की दुनिया में कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और अंदाज से भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। एक तरफ हॉलीवुड की चमक दमक है, तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का जोश और

0: भी होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्मों से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी और अंदाज से भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। एक तरफ हॉलीवुड की चमक दमक है तो दूसरी तरफ बॉलीवुड का जोश और भारतीय सिनेमा की खूबसूरती।
1: और बिल्कुल दोस्तों, हमारे इस अगले सेगमेंट में हम कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ की ही बात करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेगन फॉक्स की, जो कि एक अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2001 में आई फैमिली फिल्म हॉलीडे इन द सन से की थी,
0: जिसके बाद उन्होंने फिल्म और टेलीविज़न में कई सहायक भूमिकाएं निभाई, जैसे कि टीन म्यूजिक कॉमेडी कन्फेशन ऑफ अ टीनेज ड्रामा क्वीन।
1: साथ ही होप एंड फेथ में मेन रोल भी निभाया। और उनका जो सबसे पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर फिल्म ट्रांसफॉर्मर रहा था, वो 2007 में रिलीज़ हुई थी। इसमें मिकाएला बेंस की इनकी भूमिका काफ़ी चर्चित रही थी, जिन्हें इन्होंने ट्रांसफॉर्मर के सीक्वल में भी निभाया।
0: बिल्कुल, हॉरर कॉमेडी फिल्म, सुपर हीरो एक्शन फिल्म जैसी कई कैटेगरी की फिल्मों में रोल निभाया है। हॉरर कॉमेडी में 2009 की जेनिफर्स बॉडी में मेन रोल निभाया इन्होंने।
1: और सुपर हीरो एक्शन फिल्म में भी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल में काफ़ी जो पॉपुलर रही थी फिल्म, उसके सीक्वल में भी इन्होंने रोल निभाया। इसमें इन्होंने अप्रैल ओनील का जो कैरेक्टर था उसमें काफ़ी चर्चा में रहे थे।
0: तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम विक्की कौशल के बारे में। यह हिंदी फिल्मों में ऐसे एक्टर माने जाते हैं जो हर कैटेगरी की फिल्मों में अपने रोल को अच्छे से निभाने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स मिले हैं।
1: विक्की फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में भी शामिल है, जो कि अपनी पीढ़ी के हिंदी सिनेमा के मेन एक्टर्स में से एक है।
0: RGIT से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद 2012 में अनुराग कश्यप के हेल्पर के रूप में क्राइम ड्रामा फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर से अपना करियर की शुरुआत की।
1: इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में इन्होंने छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई, और एज अ मेन रोल इन्होंने 2015 में मसान से में निभाया। इसके बाद कश्यप की जो थ्रिलर फिल्म रमन राघव थी उसमें भी इन्होंने एक्टिंग की।
0: बिल्कुल, इसके बाद 2018 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली ड्रामा फिल्मों में राजी और संजू की सहायक भूमिकाएं निभाई, और यहीं से इनकी इनकी कहानी चालू हुई।
1: 2019 में आई फिल्म यूरी में जो द सर्जिकल स्ट्राइक थी, इसमें इन्होंने द आर्मी ऑफिसर के रूप में मेन रोल किया था, जिसमें वे बॉलीवुड के लीडिंग एक्टर्स में से शामिल हो गए थे। इस फिल्म ने इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिलवाया।
0: इसके बाद बायोपिक सरदार उधम में उधम सिंह का किरदार भी बखूबी निभाया, जिसे काफ़ी सराहा गया और बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर क्रिटिसाइज अवार्ड भी मिला।
1: रोमांटिक कॉमेडी जरा हटके जरा बचके बायोपिक सेम बहादुर कॉमेडी ड्रामा में डंकी से इन्हें इकोनॉमिकली भी काफ़ी सक्सेस मिली, और जो इनका सक्सेस थी वो काफ़ी बड़ी।
0: बिल्कुल, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 2025 में आई फिल्म छावा रही, जिसमें उन्होंने संभाजी का किरदार निभाया था।
1: अपनी एक्टिंग के करियर के अलावा विकी ने कई ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइज भी रेगुलरली किए हैं, साथ ही अवार्ड सेरेमनी में एक मेजबानी भी निभाई और कई परफॉर्मेंस भी दिए।
0: इसके साथ ही उन्हें 2019 में उरी पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। डंकी और संजू के लिए बेस्ट हेल्पिंग एक्टर अवार्ड भी मिला।

0: आज के दौर में विज्ञान और मनोरंजन ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी ज़िंदगी को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। एक तरफ विज्ञान हमें नई खोजों और तकनीक से जोड़ता है तो दूसरी तरफ फिल्में और कला हमें भावनाओं और कल्पनाओं की दुनिया में ले जाती हैं।
1: आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी महान हस्तियों की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में दुनिया भर में पहचान बनाई। एक है भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रामकृष्ण वी होजूर, जिन्होंने विज्ञान और शोध के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया, और दूसरे हैं हॉलीवुड के मशहूर एक्टर पियर्स ब्रोसनन, जिन्हें दुनिया जेम्स बॉन्ड के रूप से जानती है।
0: तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के जाने माने वैज्ञानिक रामकृष्ण वी होजूर जी के बारे में। उनका जन्म 1953 में कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने विज्ञान, खासकर बायोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है।
1: बिल्कुल दिव्या, रामकृष्ण वी होजूर एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और बायोफिजिक्स के क्षेत्र में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक रिसर्च के जरिए यह समझने में मदद की कि हमारे शरीर में मौजूद प्रोटीन किस तरह से काम करता है।
0: दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी प्रक्रिया में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है, और इन्हीं प्रोटीन की संरचना यानी स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि बीमारियों का इलाज खोजा जा सके।
1: रामकृष्ण वी होजूर जी ने इसी क्षेत्र में अद्भुत काम किया। उन्होंने न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी कि NMR तकनीक का उपयोग करके प्रोटीन की संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: NMR तकनीक सुनने में थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन इसका काम बहुत महत्वपूर्ण है। इस तकनीक की मदद से वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि शरीर के अंदर मौजूद अणु यानी मसल्स किस तरह बने हैं और कैसे काम कर रहे हैं,
1: और यही वजह है कि हुजूर जी का जो रिसर्च मेडिकल साइंस के लिए उन्हें बेहद उपयोगी माना जाता है। उनका काम नई दवाइयों और बीमारियों की रिसर्च में भी मददगार साबित हुआ है।
0: बिल्कुल दोस्तों, भारत में विज्ञान के क्षेत्र में काम करना

0: करना हमेशा आसान नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद रामकृष्ण वी होसूर जी ने मेहनत और समर्पण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई।
1: उन्होंने भारत के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया और रिसर्च को एक नई दिशा दी। वे युवाओं को विज्ञान की ओर प्रेरित करने के लिए भी जाने जाते हैं।
0: कई बार लोग सोचते हैं कि वैज्ञानिक सिर्फ लैब में काम करते हैं, लेकिन असल में उनका काम पूरी मानवता के भविष्य को बेहतर बनाना है।
1: सही कहा। अगर आज मेडिकल साइंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो उसके पीछे ऐसे वैज्ञानिक की मेहनत ही छिपी होती है।
0: बिल्कुल। रामकृष्ण वी होसूर जी को उनके योगदान के लिए कई सम्मान भी मिले। वे भारतीय विज्ञान जगत में एक सम्मानित नाम माने जाते हैं।
1: उनके शोध पत्र यानी कि रिसर्च पेपर्स दुनिया भर की वैज्ञानिक उन्हें कई युवा वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन भी दिया है।
0: दोस्तों, विज्ञान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान और सुरक्षित बनाता है, और ऐसे वैज्ञानिक हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान और मेहनत से दुनिया बदलती जा सकती है।
1: बिल्कुल। रामकृष्ण वी होसूर जी की यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि अगर लगन सच्ची हो तो इंसान अपने काम से पूरी दुनिया में पहचान बना सकता है।
0: तो दोस्तों, अब बात करते हैं हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता पियर्स ब्रॉसनन की। उनका जन्म 1953 में आयरलैंड में हुआ था। उनका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले जेम्स बॉन्ड की छवि आती है।
1: बिल्कुल। पियर्स ब्रॉसनन का जो जन्म था वो आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय का शानदार व्यक्तित्व के दम पर दुनिया भर में करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीता।
0: उनकी ज़िंदगी आसान नहीं थी। बचपन में उन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अभिनय की दुनिया में अपनी जगह बनाई।
1: दोस्तों, पियर्स ब्रॉसनन ने शुरुआत टीवी से की थी, लेकिन असली पहचान उन्हें जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से मिली थी। उन्होंने पहली बार 1995 में गोल्डन आई फिल्म में जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाया और इसके बाद वे दुनिया के लोकप्रिय बॉन्ड अभिनेताओं में शामिल हो गए।
0: उनकी स्टाइल, आवाज़ और आत्मविश्वास लोगों को बेहद पसंद आया। उन्होंने जेम्स बॉन्ड को एक नया अंदाज दिया।
1: इसके बाद उन्होंने टुमोरो नेवर डाइज, द वर्ल्ड इज़ नॉट इनफ और डाई अनदर डे जैसी फिल्मों में काम किया।
0: दोस्तों, पियर्स ब्रॉसनन सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं है, उन्होंने कई भावनात्मक और गंभीर फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया है।
1: वे एक अच्छे निर्माता यानी कि प्रोड्यूसर भी हैं, साथ ही वे पर्यावरण संरक्षक और सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं।
0: यह बात उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान भी बनाती है।
1: पियर्स ब्रॉसनन को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी मिले। उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला।
0: बिल्कुल। उनकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है। नई पीढ़ी भी उन्हें बेहद पसंद करती है।
1: एक खास बात यह है कि उन्होंने अपने करियर में अलग अलग किरदार निभाए। वे इसी वजह से लोग उन्हें जेम्स बॉन्ड तक ही सीमित नहीं मानते हैं, बल्कि अन्य क्षेत्र में भी काफ़ी चर्चित मानते हैं। तो दोस्तों, इसी कार्यक्रम में आगे हम बात करने वाले हैं बर्थडे सेलिब्रिटीज़ के बाद में डेथ एनिवर्सरी की, जिसमें हम बात करेंगे रूसी मोदी की, यानी कि रुस्तम जी होसमू जी मोदी, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। इन्हें ज़्यादातर लोग रूसी मोदी के नाम से ही जानते हैं।
0: बिल्कुल। यह टाटा स्टील के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे, साथ ही टाटा ग्रुप के लीडिंग मेंबर भी थे।
1: 17 जनवरी 1918 को बॉम्बे के पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ। अपना स्कूल एजुकेशन इन्होंने शुरू से ही कुछ साल भारत से ही किया, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए।
0: बिल्कुल। अपने कार्य और अच्छे व्यक्तित्व के लिए उन्हें 1989 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।
1: मोदी ने 1939 में टाटा स्टील में कार्यभार संभाला और 1953 में उन्हें कार्मिक निदेशक के पद पर पदोन्नत किया। 1965 में उन्होंने कच्चा माल निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इसके बाद 1970 में उन्हें संचालन निदेशक के लिए भी नियुक्त किया गया।
0: 1972 में जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बने। टाटा स्टील के मंडल प्रबंधकों को एसी मारुति सुजुकी 800 जैसी कई पुरस्कार भी इन्होंने शुरू किए।
1: मार्च 1993 में टाटा स्टील में से रिटायरमेंट के बाद इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को जॉइंट चेयरमैन का जो कार्य था वो भी इन्होंने संभाला।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: तो दोस्तों, खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं होता है, बल्कि एक यह जुनून, मेहनत और अपने सपनों को सच करने की कहानी भी होती है। दुनिया में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेडल नहीं जीते, बल्कि पूरे खेल की दिशा बदल देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही दो महान हस्तियों के बारे में, जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम बात करेंगे ओल्गा कॉर्बुट की और साइमन वीटफील्ड की।
1: बिल्कुल दिव्या, ओल्गा कॉर्बुट को द स्पेरो फ्रॉम मिंस भी कहा जाता था। उनकी जो फुर्ती, ऊर्जा और अनोखे स्टंट्स थे, इसने पूरी दुनिया को उनका दीवाना बना रखा था।
0: बिल्कुल, ओल्गा कॉर्बुट का जन्म आज ही के दिन 1955 को सोवियत यूनियन के मिनस्क शहर में हुआ था। यहाँ आज यह इलाका बेलारूस देश में आता है।

0: बचपन से ही उन्हें खेलों में काफ़ी रुचि थी, लेकिन जिमनास्टिक्स में जो उनकी प्रतिभा थी वो बहुत ही जल्दी पहचान ली थी, क्योंकि जिमनास्टिक उनका ऐसा खेल था जो कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद था।
1: उन्होंने बहुत छोटी उम्र में कठिन ट्रेनिंग शुरू कर दी। जिमनास्टिक्स एक ऐसा खेल है जिसमें शरीर का संतुलन, ताकत और आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी होता है।
0: और ओल्गा इन तीनों चीज़ों में कमाल की थी। उनकी सबसे ख़ास बात थी कि वो उनका निर्डर अंदाज।
1: बिल्कुल दोस्तों, 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में ओल्गा कॉर्बुट ने अब पहली बार दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा।
0: उस समय उनकी उम्र केवल 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने जो प्रदर्शन किया था वो इतिहास बनाने लायक था।
1: उन्होंने अपने रूटीन में ऐसे कठिन मूव्स किए जिसे जिन्हें उस समय लगभग असंभव माना जाता था।
0: उनका सबसे प्रसिद्ध स्टंट था कॉर्बुट फ्लिप। यह बैलेंस बीम और अनइवन बार्स पर किया जाने वाला बेहद ही खतरनाक मूव माना जाता है।
1: बिल्कुल, जब लोगों ने पहली बार यह स्टंट देखा तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा।
0: उनका जो प्रदर्शन था उसमें सिर्फ ताकत ही नहीं थी बल्कि भावना और कला भी दिखाई देती थी। यही वजह थी कि लोग उनके तुरंत जुड़ गए थे।
1: बिल्कुल दोस्तों, ओल्गा कॉर्बुट ने 1972 ओलंपिक में 4 मेडल जीते। इनमें 3 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल शामिल था।
0: इसके बाद वे पूरी दुनिया में सुपरस्टार बन गई। लोग उन्हें देखने के लिए घंटों इंतजार करते थे।
1: बिल्कुल, एक खास बात यह थी कि उस दौर में जिमनास्टिक्स को इतना लोकप्रिय नहीं माना जाता था, लेकिन ओल्गा इस खेल में को दुनिया भर में नई पहचान दिलाई थी।
0: उन्होंने जिमनास्टिक को बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और भावनात्मक खेल बना दिया। इसके बाद उन्होंने लाखों बच्चों को इस खेल को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
1: 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। वहाँ भी उन्होंने मेडल जीते और अपनी प्रतिभा साबित की। अगर उनके कुल ओलंपिक मेडल्स की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में कुल 6 ओलंपिक मेडल जीते हैं।
0: इनमें 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल शामिल है। ये उपलब्धि उन्होंने अपने बहुत ही बड़ी जो ताकत थी उससे हासिल की, बहुत कड़ी ट्रेनिंग से हासिल की थी।
1: वे उस दौर की सबसे चर्चित खिलाड़ियों में शामिल थी। उनके इंटरव्यू, तस्वीरें और प्रदर्शन अखबारों और टीवी की पर लगातार दिखाए जाते हैं।
0: उनकी यही वजह है कि महिलाओं की जो जिमनास्टिक थी उसको उन्होंने नई पहचान दिलाई। आज भी कई जिमनास्ट उन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं। उनकी शैली और आत्मविश्वास आज भी लोगों को प्रभावित करती है।
1: दोस्तों, हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में चुनौतियाँ भी आती है। ओल्गा को भी कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था,
0: लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने हमेशा अपने खेल को और अपने जुनून को सबसे ऊपर रखा।
1: यही वजह आज भी उनका नाम जिमनास्टिक्स इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में लिया जाता है।
0: ओल्गा कॉर्बुट को कई खेल सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिली। इन्हें दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली जो जिमनास्टिक है उसमें भी गिना जाता है। तो दोस्तों, अब को ओल्गा कॉर्बुट के बाद में बात करते हैं साइमन विटफील्ड की, जो कि रिटायर्ड कैनेडियन ओलंपिक ट्रायथलॉन चैंपियन है। इन्होंने लगातार 10 कैनेडाई ट्रायथलॉन चैंपियन जीती है और 2000 की जो सिडनी समर ओलंपिक्स है उसके समापन समारोह में कनाडा का जो नेशनल फ्लैग था वो भी इन्होंने कैरी किया।
1: बिल्कुल, जहाँ वे गोल्ड मेडल भी जीते और 2012 की ओपनिंग सेरेमनी में भी फिर से कैरी किया उन्होंने वो फ्लैग, जिससे वे कनाडा के उन गिने चुने कैनेडियन में से एक हैं जिन्हें 2 बार नेशनल फ्लैग कैरी करने का सम्मान प्राप्त हुआ है।
0: विटफील्ड ने बचपन में फुटबॉल खेला और फिर 11 साल की उम्र में ट्रायथलॉन में कदम रखा। 15 साल की उम्र में उन्होंने ट्रायथलॉन को सीरियसली एज अ कॉम्पिटिटिव लेना शुरू कर दिया। 2000 के जो समर ओलंपिक थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता।
1: बिल्कुल, जहाँ वे दूसरे साइकिलिस्ट के साथ में रेस के दौरान गिर गए थे, लेकिन फिर भी वे उठ खड़े हुए। 2008 में लगातार 3री बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर उन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और तो और वे गोल्ड मेडलिस्ट से केवल 5 सेकंड से पीछे रह गए थे।
0: 2012 में जो लंदन ओलंपिक रहे थे उसमें वे बाइक से गिर गए थे और उसके कारण उनकी जो कॉलर बोन थी वो टूट गई थी, जिससे उन्हें रेस से बाहर होना पड़ा था। इसके बाद 2013 में वे रिटायर हो गए थे।
1: वैसे दोस्तों, ट्रायथलॉन की बात करें तो यह एक मल्टी शॉट इवेंट होता है जिसमें कि 3 अलग अलग गेम्स होते हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग। ये तीनों ही गेम सिंगल रेस में बिना ब्रेक के कंप्लीट करने होते हैं।
0: और इसी स्पोर्ट में जो साइमन थे इन्होंने कई मेडल और कई अवार्ड जीते, जैसे कि 1999 में पैन अमेरिकन गेम में ब्रॉन्ज, 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में गोल्ड, 2002 के राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क।

0: रहिए।
1: दोस्तों, दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है। आज इंसान सिर्फ ऊंची इमारतें ही नहीं बना रहा, बल्कि ऐसे अद्भुत प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा है जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। कभी समुद्र के ऊपर पुल बनाए जाते हैं, तो कभी पहाड़ों के अंदर सुरंगें। इंजीनियरिंग और तकनीक ने आज लगभग हर मुश्किल को आसान बना दिया है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जो आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण माना जा रहा है, स्टेट शिप टनल।
2: बिल्कुल दिव्या, यह प्रोजेक्ट नॉर्वे देश में बनाया जा रहा है और इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा सकता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, आपने सड़क सुरंगें यानी रोड टनल को बहुत सुनी होगी, लेकिन जहाज़ों के लिए बनाई जा रही सुरंग शायद पहली बार सुन रहे होंगे।
2: और यही बात है कि इस प्रोजेक्ट को खास बनाती है, स्ट्रेट शिप टनल, जो कि दुनिया की पहली बड़ी शिप टनल मानी जा रही है।
1: यह सुरंग नॉर्वे के स्टेट प्रायद्वीप यानी स्टेट पेनिसुएला में बनाई जा रही है।
2: यह इलाका समुद्री यात्रियों के लिए काफ़ी खतरनाक माना जाता है। यहाँ मौसम जो है वो अचानक से बदल जाता है और समुद्र में तेज़ लहरें उठने लग जाती है।
1: बिल्कुल, कई बार ख़राब मौसम के कारण जहाज़ों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसी समस्या को हल करने के लिए इस सुरंग की योजना बनाई गई है।
2: इस सुरंग के बनने के बाद में यहाँ पे जहाज जो है वो सुरक्षित तरीके से पहाड़ के अंदर से बनी सुरंग से गुजर सकेंगे।
1: दोस्तों, यह सुनने में किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यह सच है और इस पर काम भी शुरू किया जा चुका है।
2: अब बात करते हैं कि आखिर यह प्रोजेक्ट इतना खास है क्यों।
1: दोस्तों, यह सुरंग लगभग 1.7 किलोमीटर लंबी होगी। इसे इतना बड़ा बनाया जाएगा कि बड़े जहाज भी आसानी से इसके अंदर से गुजर सकें।
2: इसकी चौड़ाई और ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी कि सिर्फ छोटी नावों के लिए नहीं बल्कि बड़े समुद्री जहाज़ों के लिए भी ये बनाई जा रही है।
1: इस प्रोजेक्ट में पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया जाएगा। इसके लिए आधुनिक मशीनों और इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।
2: सोचिए दोस्तों, एक पूरा जहाज अंदर पहाड़ के अंदर से बनी सुरंग से गुजरेगा, ये आपको एक अद्भुत सी बात नहीं लग रही है।
1: बिल्कुल, यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं।
2: इस सुरंग का जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो है सिक्योरिटी।
1: बिल्कुल, पहले जहाज़ों को खतरनाक समुद्री रास्तों से गुजरना पड़ता था, लेकिन सुरंग बनने के बाद यात्रा ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी।
2: इसके अलावा जो समय है वो भी काफ़ी उसकी भी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी
1: और व्यापार यानी ट्रेड को भी फायदा मिलेगा, जहां आसानी से तेज़ी से यात्रा कर पाएंगे।
2: यह प्रोजेक्ट नॉर्वे की अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
1: साथ ही यह पर्यटन यानी टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा, लोग इस अनोखी सुरंग को देखने के लिए वहां पहुंचेंगे।
2: दोस्तों, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना आसान होता नहीं है।
1: बिल्कुल, पहाड़ों को काटना, समुद्र के पास निर्माण करना और जहाज़ों के हिसाब से डिज़ाइन तैयार करना, ये सभी बड़े इंजीनियरिंग चैलेंजेस हैं,
2: लेकिन आधुनिक तकनीक ने इसे इन मुश्किलों को संभव बना दिया है।
1: इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं
2: और इसमें हज़ारों इंजीनियर और मजदूर काम कर रहे हैं,
1: और यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है।

0: बचपन हर इंसान की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। कहानियाँ, कविताएँ, गीत और नई नई बातें सीखने का उत्सुकता यही बच्चों की दुनिया को खास बनाती है। एक समय था जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, तब बच्चों में के मनोरंजन और सीखने का सबसे प्यारा माध्यम था रेडियो। रेडियो की मधुर आवाज़ बच्चों को कहानियों की दुनिया में ले जाती थी, उन्हें गीत सिखाती थी, नई बातें बताती थी और अच्छे संस्कार भी देती थी। आज हम बात करने वाले भारत की ऐतिहासिक रेडियो सेवा आकाशवाणी के 90 वर्षों के शानदार सफ़र की और ख़ास तौर पर बच्चों के से उनके गहरे रिश्ते की।
1: तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम हमारा। तो आज का हमारा जो विषय है वो बहुत ही प्यारा है और यादों से भरा हुआ है। हम बात करेंगे कि आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफ़र की और यह जानेंगे कि कैसे रेडियो ने बच्चों की दुनिया को जो है वो खूबसूरत बनाया है।
0: आकाशवाणी ने बच्चों के लिए जो योगदान दिया वह वास्तव में बहुत खास रहा है। रेडियो की आवाज़ में एक अपनापन होता है जो सीधे बच्चों के दिल तक पहुँचता है। यह समय उस समय बच्चे रेडियो पर आने वाले कार्यक्रमों का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। कई घरों में पूरा परिवार एक साथ बैठकर बच्चों के कार्यक्रम सुनता था। इन कार्यक्रमों में कहानियाँ होती थी, गीत होते थे, पहेलियाँ होती थी और साथ ही अच्छी सीख भी होती थी।
1: आकाशवाणी ने बच्चों के जो मनोरंजन के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के विकास में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि आज भी पुराने समय के उन लोगों के कार्यक्रमों को याद करके भावुक हो जाते हैं। दोस्तों, आकाशवाणी पर बच्चों के लिए कई खास कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कार देना भी होता है।
0: बिल्कुल, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रमों में बाल सभा, बाल मंच, नन्ही दुनिया और बाल वाटिका जैसे कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में बच्चों की कविताएं, कहानियां और उनकी प्रतिभाएं प्रस्तुत की जाती थी। कई बार बच्चों को खुद भी रेडियो स्टेशन बुलाया जाता था जहां वे कविता सुनाते थे, गाते थे और अपनी बातें साझा करते थे।
1: यह बच्चे के लिए बहुत ही गर्व और खुशी की बात होती थी। और दोस्तों, आकाशवाणी की यही सबसे खास बात है कि उसने बच्चों को सिर्फ श्रोता नहीं बनाया बल्कि उन्हें मंच भी दिया है।

0: तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के इतिहास की। तो 16 मई 1929 को अमेरिका के हॉलीवुड रोजवेल्ट होटल में पहली बार अकेडमी पुरस्कार यानी ऑस्कर समारोह आयोजित किया गया था। यह फिल्म जगत के इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 1960 को अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थियोडोर मैनिन ने दुनिया का पहला लेज़र चलाया। यह उपलब्धि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है।
1: IPL 2026 की बात करें तो 60वें मैच में आज कोलकाता नाइट राइडर्स KKR और गुजरात टाइटंस के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। और कल खेले गए IPL के मुकाबले की बात करें तो सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था।
0: बिल्कुल, सनराइज हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 12 मैचों में 508 रन बनाकर IPL 2026 स्टेट एंड अवार्ड ऑल टाइम रिकॉर्ड्स IPL T20 ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन 501 रनों के साथ दूसरे और RCB के विराट कोहली 484 रनों के साथ तीसरे स्थान पर चल रहे हैं।
1: तो दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, दीजिए आज हमें इजाज़त। तो मैं था आपका रेडियो दोस्त मानस और मेरे साथ थे
0: दिव्या।
1: नमस्कार।

0: FM बैंड 101.9 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो लेक सिटी। अभी युवाओं ने सुना उनका पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कुछ ही पलों में समाचार का प्रसारण हम करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने 5 देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर

0: युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है, हम सभी देख रहे हैं। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्चस्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो लेक सिटी। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारी इवनिंग लोकल विंडो के कार्यक्रम और शाम के 6:05 हो चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुहानी शाम।

दिल से जुड़ी बातें, एहसासों की कहानी और रिश्तों की गर्माहट। मैं हूं आरजे संगीता पराठी और आज की इस खूबसूरत शाम में स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रिश्ते की जो परिवार से बढ़कर बन जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, परिवार तो हम खुद नहीं चुनते हैं, पर एक रिश्ता ऐसा होता है जो हम खुद चुनते हैं, वो है दोस्ती का रिश्ता। तो सुहानी शाम की शुरुआत में हम सुनते हैं हम सबका फेवरेट सॉन्ग ऑन दोस्ती, बट आगे हम दोस्ती के बारे में कुछ आज की जनरेशन के साथ भी डिस्कशन करेंगे।

दोस्ती बात करी थी हमने दोस्ती से और शुरुआत करी थी एक प्यारे सी सॉन्ग के साथ, लेकिन आज की दोस्ती भी क्या पहले वाली जैसी दोस्ती रह गई है? आज की दोस्ती में दोस्तों रील्स हैं, टैग्स हैं, लेकिन वो घंटों वाली बातें, बिना वजह मिलने की खुशी और मैं हूं ना वाला एहसास अब भी है बाकी? ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि

आज अगर हम देखें तो दोस्ती में कहीं ना कहीं स्टेटस और शो ऑफ वाली बातें ज़्यादा हो गई हैं। हम दिखावे के बोझ में इतने दब गए हैं कि जो रियल फ्रेंड्स हैं उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। हम वर्चुअल दुनिया में इतने खो गए हैं कि हमें रियलिटी का कोई एहसास ही नहीं है। पहले होता था कि दोस्त घर के बाहर आकर आवाज़ लगाते थे और घंटों घर के बाहर खड़े होकर ही हम बात कर लेते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने में आई थिंक कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। जब हम ऑनलाइन दोस्तों को देखते हैं तो हाय हेलो कर लेते हैं, अदरवाइज़ हमें किसी को भी ये पूछने का वक्त ही नहीं है कि तू कैसा है या तू कैसी है। कहीं ना कहीं आप वो अंदर से फीलिंग मिस करते हैं और यही अकेलेपन का कारण है, क्योंकि पहले हम अकेले नहीं होते थे। तनाव, चिंता, परेशानियाँ, ये सब बातें हमें सोशल मीडिया के ज़माने से पहले कभी फील नहीं होती थी, क्योंकि हमारे पास सबसे प्यारे दोस्त होते थे जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर लेते थे, चाहे कैसी भी सुख हो दुख हो, क्योंकि दिखावा नहीं था। परेशानियाँ तो तब भी थी, अब भी हैं, लेकिन तब दिखावा नहीं था, तब प्यार दिल से था। लेकिन आज अगर हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने मेरे दोस्त को कुछ बता दिया तो वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे सबको पता चल जाएगा, या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या सोचेगी, तो हम इस चिंता में अपने दिल की बात कभी किसी दोस्त से रियली बताते ही नहीं हैं। दुनिया वर्चुअल हो गई है, अगर कोई बीमार है तो भी हम फ़ोन पर हाल पूछ लेते हैं, जाने की जहमत नहीं उठाते हैं। जबकि पहले आधी रात को भी अगर कोई बीमार सुनता था तो दोस्त आके खड़े हो जाते थे। तो ये फ़र्क थोड़ा रियलिटी और वर्चुअलिटी का आज की दोस्ती में है। जारी रखेंगे ये बातचीत, पहले प्ले करते हैं एक प्यारा सा आज के ज़माने का दोस्ती का सॉन्ग।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है सुहानी शाम कार्यक्रम में। कभी कभी लगता है ना कि दोस्तियां बदल गई है, लेकिन सच तो ये है कि लोग थक गए हैं। काम, एक्सेप्टेशंस, कैरियर प्रेशर और इन्हीं के सब के बीच अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि घर पहुंच गए क्या, तो वो रिश्ता भी हमें आज खास लगने लगता है। क्योंकि कहते हैं ना कि आज फास्ट रिप्लाइज नहीं है, सेफ स्पेसेस नहीं है, और फिल्टर के बिना तो दोस्ती है ही नहीं। हर चीज़ में फ़िल्टर हम यूज़ करने लगे हैं। शहरों में भी सबके पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, ओवर थिंकिंग और बहुत सारे चीज़ों का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि एक्चुअली ना जो हम ज़िंदगी जीते हैं वो भूल चुके हैं। ज़िंदगी जीना सिर्फ और सिर्फ दिखावा नहीं है। दूसरों को दिखाने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया के तरह ही हम अपने आप को रहने लगे हैं, सोचने लगे हैं, खाने लगे हैं, पहनने लगे हैं, सब कुछ हमारा दिखावा होने लगा है। इसीलिए हम पर इतना प्रेशर हो गया है कि हम सच्चाई वाली बातों से और सच्चाई वाली दुनिया से और सच्चाई वाले लोगों से दूर भागने लगे हैं। पहले हम कभी नहीं सोचते थे कि ये बंदा या बंदी मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है तो मेरा दोस्त नहीं बन सकता। किसी के भी घर चले जाते थे, कुछ भी खा लेते थे, उनके घर में जो बना है जैसे बना है थाली कटोरी में सिंपल खाना खा लेते थे और बहुत खुश होते थे। क्योंकि और हमेशा बोल के आते थे कि आंटी ये खाना बहुत अच्छा बना है, मेरे लिए भी पैक कर देना या मुझे भी खिलाओ या गरम रोटी सिक रही है। तो कभी ये सोचते ही नहीं थे कि इसके घर एक्स्ट्रा बनाए या नहीं बनाए, हम जाके खाने बैठ जाते थे। तो ये होती थी दोस्ती। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखें तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। हम किसी के घर पहले मैसेज या फ़ोन करके पहुंचते हैं, चाहे वो हमारा कितना भी फास्ट फ्रेंड हो, और उसके बाद भी वहाँ जाने के बाद भी अगर कुछ बन रहा है तो हम फॉर्मेलिटी में हमेशा मना करते हैं, चाहे हमारा मन हो या ना मन हो। तो इतने फॉर्मल रिश्तों में आप कब सोच सकते हैं कि हम अपने दिल की बात दोस्तों से कर पाएंगे। तो गाइज, बी रियल नॉट वर्चुअल। सुनते हैं अगला सॉन्ग।

हाँ जी, दोस्तों के साथ कोई भी दिन, कोई भी रात, कोई भी वक्त, कोई भी खुशी, कोई भी गम बहुत आसानी से कट जाता है। कई बातें हम वर्ड्स में नहीं भूल पाते, लेकिन एक गाना क्वाइटली सब कुछ कह जाता है। मेट्रो सिटीज़ में ना लोगों को इंडिपेंडेंट तो बना दिया है, पर इमोशनली अवेलेबल रहना शायद बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज की फ्रेंडशिप में सेल्फीज़ तो बहुत दिखती हैं, लेकिन रियल फ्रेंडशिप वही है जो आपकी साइलेंस को भी समझ जाए। कहते हैं ना कि दोस्त वही होता है जो चुप्पी को समझ जाए, आपके चेहरे को देखकर बता दे कि आप खुश हैं या दुखी हैं, और आपके मूड को बेटर करने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाए, तभी उसको दोस्त बोलते हैं। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें बहुत अच्छे से दोस्ती को एक्सप्लेन किया था, और पूरे टाइम दोस्त आपस में मिलके ही सब कुछ कर लेते हैं, और दोस्तों की जो बॉन्डिंग दिखाई थी वो अमेजिंग थी। तो यही, इसी मूवी का एक सॉन्ग सुनते हैं,

ऐसे ही होते हैं दोस्त, जो कोई भी सिचुएशन हो हमें किसी भी तरह के डिप्रेशन से, किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकाल ले आए। यही इस सॉन्ग में भी प्ले किया गया था। एक एक वर्ड दिल को छू लेने वाला था। और दोस्ती भी शायद ऐसी ही होती है, क्योंकि हॉस्टल रूम्स, लेट नाइट चाय, रैंडम बाइक राइड्स, ये सब आजकल की दोस्ती में बहुत कॉमन है। लेकिन जब दिल की बात आती है, या दिल के रिश्तों की बात आती है, या कुछ कहने की बात आती है, तो हम दुनिया में बहुत कम ऐसे लोगों को अपने करीब पाते हैं जिनके साथ हम अपने दिल का, अपने मन का हर कतरा शेयर कर सकें। तो आज मेरी इस न्यू जनरेशन से यही रिक्वेस्ट है कि चाहे दोस्त हम कम बनाएं, लेकिन ऐसे बनाएं जो रियल हो, वर्चुअल नहीं। वर्चुअल दोस्त आपकी प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आप उनसे दिल की बात कभी नहीं कर पाएंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दोस्तों, याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम अपने दोस्तों के ननिहाल भी पहुंच जाते थे, उनकी बुआओं के यहाँ भी पहुंच जाते थे, उनके चाचाओं के यहाँ भी पहुंच जाते थे और वहाँ पे भी उतने ही हक से हम सब कुछ करते थे, खाना खाते थे, रहते थे, इवन रह भी लेते थे। और आज

अगर देखा जाए हम उतने ही हक से दोस्तों के घर में भी रह लेते थे, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती थी कि मम्मी आज हम वहाँ जाके रह लें क्या। और आज का जो रिलेशनशिप हो गया है दोस्ती वाला, वो इतना अजीब सा हो गया है कि हमें हर चीज़ में अपने दोस्तों से भी परमिशन लेनी पड़ती है। कि कई बातें कहते हैं ना कि हम मुंह से नहीं बोल पाते, तो हमारे दोस्त समझते हुए भी अनजान बन जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। शायद वक्त की कमी है, या शायद रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रही, या हम चाहते हुए भी इतने नेगेटिव हो गए हैं कि हम समझना चाहकर भी नहीं समझ पाते। हम समझते हैं कि अगर हमने एक बार किसी चीज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो हमेशा के लिए हमारे लिए ये एक टास्क बन जाएगा। लेकिन होता है ना कि कभी कभी हम कहते हैं कि दोस्ती ऐसी होती है कि हम रोज बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब लाइफ टूट रही होती है ना, या हम डिप्रेशन में होते हैं, या हमें कोई ऐसा मोमेंट हमारी लाइफ में आता है, तो हम सबसे पहले दोस्तों का कंधा ढूंढते हैं। अगर हमें वो कंधा मिल जाता है तो हमारे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आई थिंक आप सब मेरी इस बात से एग्री करते हैं, क्योंकि दिल वो रिश्ता है ना। एक कहावत भी कही गई है कि अगर दिल खोल लो दोस्तों के साथ तो नहीं खोलना पड़ेगा डॉक्टर्स के साथ। ये शायद एक फनी कोट है, बट इट्स रियली ट्रू। सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग।

दोस्ती, हम बात कर रहे हैं आज इस सबसे खूबसूरत रिश्ते पर, और इस पर ही कुछ लाइंस मुझे याद आ रही हैं कि दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती है कहानी बनकर, पर दोस्तों दोस्त तो हमेशा दिल के रहते हैं करीब, कभी मुस्कान बनकर और कभी आँखों का पानी बनकर।

जब दोस्त साथ हो तो लगता है कि हम कुछ भी कर जाएंगे, और ऐसी जो फीलिंग्स आती है ना वो आती है कि सिकंदर टाइप्स, कि अगर हमारा दोस्त हमारे साथ है या जब हमारी गैंग हमारे साथ होती है तो हमें यही फील होता है कि हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, किसी से पंगा ले सकते हैं, किसी से जीत सकते हैं, और दोस्तों का साथ है तो हर मंजिल आसान है।

दोस्तों, आपको हम सुनवा रहे थे सुहानी शाम के प्रोग्राम में कुछ हसीन नगमे दोस्ती से रिलेटेड, और बहुत सारी बातें हमने आपके साथ साझा करी दोस्ती से रिलेटेड। दिल का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, इसीलिए शायद दोस्त इतने प्यारे होते हैं, और शायद इसीलिए म्यूज़िक भी हमारा इतना स्पेशल है, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, सिटीज़ बदल जाती है, लेकिन कुछ गाने हमेशा हमें उन लोगों तक वापस ले जाते हैं जो हमारे अपने थे, जो हमसे कभी नहीं दूर हो सकते। तो इसीलिए म्यूज़िक सुनते रहिए, और इसी सॉन्ग्स के साथ, इसी गाने के साथ दीजिए अपनी इस दोस्त संगीता को विदा। फिर मिलेंगे के वादे के साथ, और लास्ट में हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं एक प्यारा सा सॉन्ग कि कभी किसी को ज़रूरत हो तो मैं हूँ ना।

FM बैंड 101.9 MHz पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी उदयपुर के रेडियो लेक सिटी से। अभी आपने सुना कार्यक्रम सुहानी शाम। अब आगे के कार्यक्रमों के लिए जुड़ते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला।

सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों

0: शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिग्दर्शक दीप और अगर।
2: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
3: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्मकार सुनील दत्त ने।

फौजी भाइयों नमस्कार। इससे पहले भी हम कई बार मिले हैं, बल्कि बार बार मिले हैं। कभी तपते हुए रेगिस्तानों में, कभी बर्फ से ढके पहाड़ों पर, और मैंने खुद देखा है जिंदगी की हर राह में, हर मोड़ पर, हर मंजिल पर आप आज़ादी की हिफाजत कर रहे हैं, वतन की हिफाजत कर रहे हैं। कई बार सोचा कि आपसे आपका नाम पूछूं, फिर ख्याल आया सैनिक का तो एक ही नाम होता है, सैनिक। वो तो सिर्फ देश की आज़ादी के लिए लड़ता है, वतन के आज़ाद गुलशन में खिले फूलों और गुंचों की हिफाजत करता है।

फौजी भाइयों, देश की सीमाओं पर मैं आपको कई बार मिला, आपका मनोरंजन किया। वो यादें अब भी मेरे दिल में ताज़ा हैं। चंद साल हुए किशोर कुमार साहब को मैंने बड़ी मुश्किल से राज़ी किया कि वो हमारे साथ अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप में आकर आपका मनोरंजन करें। किशोर कुमार साहब इससे पहले स्टेज पर नहीं गाते थे। खैर, हम लोग नथुला और गैंगटॉक के बीच बर्फ से ढके हुए एक पहाड़ी कैंप में पहुंचे। हमारे पहुंचने के बाद ही देखते देखते सैनिकों ने लकड़ी का एक स्टेज बनाया और खुद बर्फ पर पलती मारकर बैठ गए। प्रोग्राम शुरू किया तो किशोर साहब स्टेज पर गाने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी हुए कि होंठ मैं हिलाऊंगा और स्टेज पर मेरे पीछे खड़े होकर वो गाएंगे। खैर, गाना शुरू हुआ और कुछ ही देर के बाद मैं होंठ हिलाते हिलाते किशोर साहब के सामने से हट गया। किशोर साहब बहुत चिल्लाए, मगर तालियों की गूंज ने उन्हें गाने पर मजबूर कर दिया। इस तरह फौजी भाइयों, किशोर साहब की शर्म का घूंघट आप ही के सामने पहली बार उठाया गया। और आपको याद है वो गाना कौन सा था और कौन सी फिल्म का था? पड़ोसन का। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।

0: लद्दाख से दम पे दम भरते हुए हम सब दिल्ली आए, गांजे का दम नहीं, फौजी भाइयों के प्यार का दम। दिल्ली पहुंचकर हम सीधे पंडित नेहरू जी के बंगले पर गए उन्हें सलाम करने। उन्हीं दिनों एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए एक अमेरिकन टीम आई थी। पंडित जी ने उनसे मिलवाया और कहा कि ये हैं हमारे फिल्मी माउंटेनियर्स, अभी लद्दाख से आए हैं फौजी भाइयों का मनोरंजन करके। और फिर पंडित जी ने फरमाइश की कि वही गाना गाकर सुनाओ जो हमारे जवानों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। लीजिए, ये है वो गाना।
1: मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े।

0: फौजी भाइयों, आपसे आपकी बातें इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस वक्त भी आपके दरमियान हूं। तो अब जरा बर्फीली चोटियों से उतरिए और बरेली के बाजार में तशरीफ लाइए।
1: झुमका गिरा रे, हाय झुमका।

0: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप और अगरबत्ती।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन और हवन सामग्री।
2: सुबह जलाओ, शाम जलाओ,
3: देव दर्शन धूप।
4: सर्वोत्तम क्वालिटी का स्वरूप देव दर्शन धूप।
5: और जिंदगी के मैदान में भी राजपूतों की यही शान है। फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग हम जैसलमेर के इलाके में कर रहे थे। वहां पानी 8 बरस से नहीं बरसा था। वहां के बच्चों को पता ना था कि बारिश होती क्या है। पीने के लिए खारा पानी वो लोग कई मील दूर से लाया करते थे। उनके जानवर भूख और प्यास से मर रहे थे। गरीबी महामारी की तरह फैली हुई थी। मगर कोई भी राजपूत अपना गांव, अपनी धरती छोड़कर जाने के लिए राजी नहीं था, और ना ही गरीबी से तंग आकर कोई भीख मांगता हुआ दिखाई देता था। उस वक्त मुझे लगा ये भी एक जंग है, कुदरत के साथ जंग, गरीबी के साथ जंग, हालात के साथ जंग, और इनकी जिंदगी मुसलसल एक जंग है। ये भी बहुत बड़े सैनिक हैं। भगवान करे राजस्थान की उस तपती हुई रेत पर बादल झूमे।

फौजी भाइयों, अजंता आर्ट्स वेलफेयर ट्रुप में सिर्फ मैं ही नहीं हूं, बल्कि फिल्मी दुनिया के बहुत से कलाकार जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो सब हैं। उन्हीं कलाकारों के साथ हम एक बार जम्मू में आपका मनोरंजन कर रहे थे कि अचानक खबर आई मीना कुमारी जी का इंतकाल हो गया। फौरन एक आर्मी ऑफिसर ने स्टेज पर आकर इस खबर का ऐलान किया और उसी समय ये प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। सारे फौजी हमारे गम में बराबर के शरीक थे और शेर और नगमे की वो जमी हुई महफिल मीना जी की याद में डूब गई। हर जबान पर उनका नाम था, हर दिल में उनका ख्याल था और मैं एक कोने में खड़ा सोच रहा था, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं।

0: फौजी साथियों, फिल्मकार सुनील दत्त द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
2: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
1: मीना कुमारी।
3: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
1: जीवन।
4: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
1: देव आनंद।
5: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़ कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
1: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला। हर शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: फिल्मकार सुनील दत्त द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं।

0: एक वाकया मुकेश भाई का भी याद आया। उन दिनों उन्हें पहली बार हार्ट अटैक हुआ था और हम लोग कहीं प्रोग्राम करने जा रहे थे। मुकेश भाई भी चलने को तैयार हो गए। मैंने कहा, मुकेश भाई सफ़र लंबा है, आपको तकलीफ हो जाएगी। तो मुकेश भाई ने कहा, तुम चिंता ना करो, जवानों को खुश करने में मुझे कभी और किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। तो वो हमारे साथ गए और अपनी आवाज़ से जवानों के दिलों को गर्माते रहे।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे

0: अच्छा फौजी भाइयों, उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा, आइंदा जब भी आप याद करेंगे मुझे अपने करीब पाएंगे। नमस्ते।
1: फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया फिल्मकार सुनील दत्त ने। ये रिकॉर्डिंग आपने सुनी विविध भारती के संग्रहालय से।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप हैं विविध भारती के संग।
2: जिज्ञासा
1: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आजकल फर्जी सिम कार्ड की समस्या बहुत बढ़ गई है। कुछ लोग आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके आपके नाम पर सिम ले लेते हैं। बाद में उस सिम से कोई गलत गतिविधि होती है तो पुलिस सबसे पहले उस व्यक्ति के पास पहुंचती है। ऐसे में बेवजह पुलिस केस में नाम आने से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि समय समय पर आप चेक करते रहें कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। भारत सरकार ने इसके लिए संचार साथी नाम का एक पोर्टल बनाया है। ये पूरी तरह से फ्री और सुरक्षित तरीका है। जिज्ञासा कार्यक्रम में आज हम आपको बता रहे हैं कि संचार साथी में कैसे ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ब्राउजर खोलें और लिखें sanchar.sathi.gov.in या लिखें sanchar.sathi.gov.in। संचार साथी की स्पेलिंग है sanchar.sathi.gov.in या

4.sathi.gov.in। उसके बाद आपको एक ऑप्शन चुनना है नो योर मोबाइल कनेक्शंस या कनेक्टेड मोबाइल नंबर्स। वहां अपना आधार नंबर और कैप्चा भरें, ओटीपी आएगा उसे डालें, स्क्रीन पर आपके नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबर दिख जाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिखे जो कि अनजान हो, जो आपने कभी नहीं लिया, तो तुरंत उसी पोर्टल पर रिपोर्ट फ्रॉड या ब्लॉक कनेक्शन का ऑप्शन चुनें और इस तरह से आप उस सिम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक करने के लिए पोर्टल पर सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर सेक्शन यानी CEIR सेक्शन में जाना है। वहां फर्जी नंबर की शिकायत दर्ज करना है। जो जरूरी दस्तावेज हैं वो आधार और फोटो हो सकते हैं, उन्हें अपलोड कीजिए। कुछ ही घंटों में ये नंबर ब्लॉक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब झंझट करने की जरूरत क्या है, तो आपको बता दें कि अगर आपके नाम पर कोई फर्जी सिम कार्ड चल रहा है और कोई ठगी हो जाती है या कोई गलत काम हो जाता है, तो सबसे पहले पुलिस आपके पास आएगी। इसलिए जरूरी यह है कि आप हमेशा चेक करते रहें कि आपके नाम पर कोई गलत सिम कार्ड तो नहीं चल रहा। बैंक अकाउंट UPI आधार से लिंक होने पर आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। और हाँ, अब इससे जुड़ी कुछ और बातें आपको बताएं। कम से कम 3 महीने या 6 महीने में एक बार हर व्यक्ति के लिए ये चेक करना जरूरी है कि आपके नाम पर कोई अनजान नंबर तो नहीं चल रहा है। दूसरी चीज ये है कि जब भी कभी आप अपने आधार कार्ड की कॉपी कहीं सबमिट करते हैं, तो उस कॉपी को साइन करते हुए वहां लिखें फॉर गैस कनेक्शन, फॉर होटल बुकिंग। या किसी अनजान आदमी को आधार कार्ड कतई ना दें, ना ही उसकी कॉपी दें। अगर सिम ले रहे हैं तो खुद मौजूद रहें, किसी और व्यक्ति को सिम लेने के लिए ना भेजें। अगर कोई फर्जी नंबर मिले तो तुरंत ब्लॉक करें और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रहे, संचार साथी.gov.in पर जाकर आप ये काम कर सकते हैं।

राजस्थान के जैसलमेर शहर में इस हफ्ते तापमान 51 डिग्री पहुंच गया। जाहिर है कि ये भयानक गर्मी है, भीषण गर्मी है। ऐसे में लोग एयर कंडीशन पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि क्या 51-52 डिग्री तक की जो गर्मी है उसमें एसी कुछ कर सकता है। दरअसल एसी तकरीबन 52 डिग्री तक ही कूलिंग कर पाता है, और उसके आगे क्या? ज्यादातर एयर कंडीशनर बाहर 50 या 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो तो ठीक से काम करते हैं, पर तापमान इससे ऊपर हो तो एसी की कूलिंग क्षमता जवाब देने लगती है। इसका कारण यह है कि एसी बाहर की गर्म हवा से अंदर की गर्मी निकालकर ठंडी हवा बनाता है। जब बाहर का तापमान 51-52 डिग्री हो जाता है, जैसा जैसलमेर में हुआ, तो एसी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसलिए कमरे का तापमान 28 से 30 डिग्री से नीचे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एसी लगातार चलता है लेकिन ठंडक कम मिलती है, बिजली का बिल बढ़ता चला जाता है, या फिर एसी जल्दी गर्म हो जाता है और खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ ये कहते हैं कि 50 डिग्री से ऊपर के तापमान में एसी के काम करने की काबिलियत 30-40% तक कम हो जाती है। अगर आपने एसी को 24 डिग्री पर सेट किया है 24 डिग्री पर, तो आपका कमरा 30-32 डिग्री से ज्यादा ठंडा नहीं होगा। कुछ मामलों में एसी केवल हवा फेंकता रहेगा लेकिन आपको ठंडक महसूस नहीं होगी। ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में एसी का तापमान आपको सेट करना है 26 से 28 डिग्री पर, यानी 20 से 22 डिग्री पर एसी नहीं रखना है। इससे एसी पर दबाव कम पड़ेगा और आपकी बिजली भी बचेगी। दूसरी बात, अगर भीषण गर्मी पड़ रही है तो एसी की नियमित सर्विस करवाएं। गर्मी से पहले और बीच बीच में एसी की अच्छे से सर्विसिंग करवाएं, क्योंकि गंदा फिल्टर, ब्लॉक कॉइल्स एसी के परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं। घर को गर्मी से बचाएं, दिन में पर्दे बंद रखें, छत पर वाइट रिफ्लेक्टिव पेंट करवाएं ताकि गर्मी छत में समा न जाए। रात में खिड़कियां खोलकर क्रॉस वेंटिलेशन करें, कूलर का भी इस्तेमाल करें, यानी पहले कूलर के जरिए आप इस कमरे को ठंडा कर सकते हैं, उसके बाद एसी चलाएं। इन्वर्टर एसी का बहुत बड़ा फायदा होता है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी ज्यादा गर्मी में भी बेहतर परफॉर्मेंस करता है। तो ये तमाम चीजें हैं। उसके अलावा इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिज्ञासा में पिछले हफ्ते भी हमने आपसे कहा था और इस हफ्ते भी हम कह रहे हैं कि इस गर्मी में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और थकान का खतरा बहुत

0: बढ़ जाता है। खूब पानी पिएं, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने, दोपहर में जहां तक मुमकिन हो बाहर निकलने से बचें।
1: गर्मी लगे गर्मी, हाय गर्मी लगे गर्मी, गर्मी लगे गर्मी, हाय गर्मी लगे गर्मी।
0: और अब जिज्ञासा कार्यक्रम में हम आपको हंटा वायरस के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में इन दिनों लगातार चर्चा हो रही है। अटलांटिक महासागर में होंडियस नामक क्रूज शिप पर 7 लोगों के बीमार पाए जाने और 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। इसका कारण है शिप पर संदिग्ध हंटा वायरस का फैलना। दरअसल जहाज में तकरीबन 150 यात्री और इसके अलावा चालक दल के सदस्य मौजूद थे। हंटा वायरस से जुड़े मामलों के सामने आने के बाद ये जहाज अब स्पेन के कैनरी आइलैंड्स की तरफ जा रहा है। यहां मरीजों को मेडिकल मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया है कि केप वर्डे इस ऑपरेशन को पूरा करने में सक्षम नहीं है। कैनरी द्वीप इसके सबसे नजदीक है और यहां ज्यादा सुविधाएं हैं, इसलिए इन लोगों की मदद करना स्पेन का नैतिक और कानूनी कर्तव्य है। सवाल यह है कि ये हंटा वायरस कैसे फैलता है। ये जो नाम है ये कोरियाई नदी हंतान से लिया गया है। दरअसल 1950 के दशक में कोरिया के इस इलाके में कई सैनिक इस वायरस से बीमार हुए, लेकिन सन 1977 में पहली बार इस वायरस की पहचान हुई। हंटा वायरस वायरस का एक ऐसा समूह है जो आमतौर पर चूहों और उनकी प्रजातियों में पाया जाता है। अगर ये इंसान में फैल जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल इसके संक्रमण से 10,000 से 1,00,000 तक लोग प्रभावित होते हैं। हंटा वायरस संक्रमित चूहों के लार, मूत्र और मल के जरिए बाहर निकलता है। जब यह पदार्थ सूखकर धूल बन जाता है और हवा में उड़ता है तो सांस के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर यही वायरस इंसान के शरीर में इन्फेक्शन पैदा करता है और अलग अलग तरह के लक्षण सामने आ सकते हैं। हंटा वायरस कई तरीकों से इंसानों में फैलता है, खासकर जब कोई इंसान बाहरी गतिविधियों के दौरान चूहों के मलमूत्र के संपर्क में आता है, जैसे बागवानी करते, लकड़ी काटते, जॉगिंग करते हुए, या फिर इसके अलावा इसका खतरा ऐसे इलाकों में ज्यादा होता है जहां चूहों की संख्या ज्यादा हो। आमतौर पर इसका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, लेकिन कभी कभी जब लंबे समय तक लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं तब ऐसा जरूर होता है। यही कारण है कि इसका संक्रमण खासकर घर के सदस्यों या करीबी लोगों में ज्यादा फैलता देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हंटा वायरस से संक्रमित होने के लक्षण आमतौर पर वायरस के संपर्क के 1 से 8 हफ्ते के भीतर शुरू होते हैं। आम लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे पेट दर्द, जी मिचलाना या उल्टी होना शामिल है। यह वायरस इंसान में 2 तरह की बीमारी पैदा कर सकते हैं। पहली बीमारी है हंटा वायरस कार्डियो पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPCS। इसका असर ज्यादातर अमेरिका में देखा गया है। ये बीमारी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है, इससे खांसी होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। और दूसरी जो बीमारी है वो है हेमरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम। हंटा वायरस से होने वाली इस बीमारी का असर यूरोप और एशिया में देखा गया है। इसमें नुकसान गुर्दे को पहुंचता है और ब्लड प्रेशर लो होता है, खून बहने की समस्याएं होती हैं, कई बार तो गुर्दे अचानक काम करना बंद कर देते हैं। अब तक इस बीमारी का पूरी तरह से कोई इलाज मौजूद नहीं है। इसके लक्षणों का इलाज किया जाता है। इसमें मरीज की सांसों, दिल और गुर्दे से जुड़ी समस्याओं पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर मरीज को सहायता दी जाती है। जब बीमारी फैल रही हो या मामले संदिग्ध हो तो मरीजों को फौरन पहचानना और उन्हें आइसोलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग जरूरी है और सामान्य बचाव के उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हंटा वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है इससे सावधान रहना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक संक्रमण से बचने के लिए चूहों की रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने को सुरक्षित तरीके से ढककर रखना है और इसके अलावा गंदगी से बचना एक बहुत जरूरी उपाय है। भारत में अलग अलग समूह के लोगों के शरीर में हंटा वायरस एंटीबॉडी होने की जांच की गई है। इस जांच में तकरीबन 38 नमूनों में से 28 में हंटा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की पुष्टि हुई है। इससे ये साबित होता है कि भारत में भी हंटा वायरस मौजूद है और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और अब चलते चलते साइबर क्राइम की एक नई घटना और उससे जुड़ी सावधानियों की बातें। बेंगलोर में एक व्यक्ति

के पास व्हाट्सएप पर शादी का एक कार्ड आया। उसने वो कार्ड खोला और उसका बैंक अकाउंट खाली हो गया। दरअसल उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। उसको लगा कि ये शादी का कार्ड है। वहां एक फूलों से सजी हुई तस्वीर नजर आ रही थी, लेकिन वो फाइल कोई इमेज फाइल नहीं थी, बल्कि वो फाइल .apk फाइल थी जो किसी अनजान नंबर से आई थी, और देखने में ये लग रहा था कि वो शादी का कार्ड है। दरअसल स्कैमर्स अक्सर लोगों की तकनीकी कमियों का ही फायदा उठाते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को फोन सुरक्षा के बेसिक रूल्स बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई, जब कभी भी आपके पास किसी अनजान व्यक्ति का कोई मैसेज आए, खासतौर पर वो मैसेज ग्राफिक हो, तो चेक करना चाहिए कोई भी फाइल जिसमें तस्वीर होती है वो फाइल APK नहीं हो सकती। वो फाइल हमेशा जो .jpg फाइल होगी। APK फाइल का मतलब ही है कि आपके मोबाइल में कुछ इंस्टॉल किया जा रहा है। सावधान रहें, सतर्क रहें और साइबर क्राइम से बचें। ये था आज का जिज्ञासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए शोध आलेख, स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का था। अब मिलते हैं अगले हफ्ते। जिज्ञासा।

0: जिज्ञासा।
1: एक बेमिसाल शायर।
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़े से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आइए सुनते हैं पत्नी का पत्र, इस कहानी का तीसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का।

पिछले हफ्तों में आपने सुना, मृणाल अपने पति के नाम पत्र लिखती है जिसमें अपने अतीत की तमाम कड़वाहटों का जिक्र करती है। मृणाल की शादी उस घर में होती है जहाँ पुरुष सत्ता है, जहाँ स्त्री का अपना कोई विचार या अस्तित्व नहीं है। विधवा माँ की मृत्यु के बाद मृणाल की जेठानी की बहन बिंदु अपने चचेरे भाइयों के अत्याचार से तंग आकर मृणाल के घर आ जाती है, लेकिन मृणाल के परिवार के सदस्य बिंदु को सम्मान नहीं देते। बिंदु का रंग काला था। विवाह में अड़चने होती हैं, लेकिन तय हो जाता है विवाह पर एक पागल व्यक्ति से। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना। अब सुनिए आगे। बिंदु का वर

ठीक हुआ, बड़ी जेठानी बोली, जान बची, माँ काली ने अपने वंश की लाज रख ली। वर कैसा था मैं नहीं जानती, तुम ही लोगों से सुना था कि सब बातों में अच्छा है। बिंदु मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी थी, बोली थी, जी जी जी जी मेरा ब्याह क्यों करवा रही हो भला, बोलो। मैंने उसे समझाते बुझाते कहा था, बिंदु डर मत, मैंने सुना है तेरा वर बहुत अच्छा है। बिंदु बोली थी, अगर वर अच्छा है तो मुझ में भला ऐसा क्या है जो उसे पसंद आ सके। लेकिन वर पक्ष वालों ने तो बिंदु को देखने के लिए आने का नाम भी न लिया। बड़ी जीजी इससे बड़ी निश्चिंत हो गईं, लेकिन बिंदु रात दिन रोती रही, चुप होने का नाम ही न लेती थी। उसको क्या कष्ट है ये मैं जानती थी। बिंदु के लिए मैंने घर में बहुत बार झगड़ा किया था, लेकिन उसका ब्याह रुक जाए ये बात कहने का साहस नहीं होता था। कहती भी किस बल पर, मैं अगर मर जाती तो उसकी क्या दशा होती। एक तो लड़की, उस पर काली, जिसके यहां जा रही है वहां उसकी क्या दशा होगी। इन बातों की चिंता न करना ही अच्छा था, सोचती तो प्राण कांप उठते। बिंदु ने कहा, जी जी ब्याह के अभी 5 दिन और हैं, इस बीच क्या मुझे मौत नहीं आएगी। मैंने उसे खूब धमकाया, लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि अगर किसी स्वाभाविक ढंग से बिंदु की मृत्यु हो जाती तो मुझे चैन मिलता। ब्याह के एक दिन पहले बिंदु ने अपनी जीजी के पास जाकर कहा, जीजी मैं तुम लोगों की गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी वही करूंगी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूं, मुझे इस तरह मत धकेलो, मत धकेलो मुझे। कुछ दिनों से जीजी की आंखों से चोरी चोरी आंसू झर रहे थे, उस दिन भी झरने लगे। लेकिन सिर्फ हृदय ही तो नहीं होता, शास्त्र भी तो है। उन्होंने कहा, बिंदु जानती नहीं, स्त्री की गति मुक्ति सब कुछ पति ही है। भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। असली बात तो ये थी कि कहीं कोई रास्ता ही न था, बिंदु को ब्याह तो करना ही पड़ेगा, फिर जो हो सो हो। मैं चाहती थी कि विवाह हमारे ही घर से हो, लेकिन तुम लोग कह बैठे वर के ही घर में हो, उनके कुल की यही रीति है। मैं समझ गई, बिंदु के ब्याह में अगर तुम लोगों को खर्च करना पड़ा तो तुम्हारे गृह देवता उसे किसी भी भांति नहीं सह सकेंगे, इसलिए चुप रह जाना पड़ा। लेकिन एक बात तुम में से कोई नहीं जानता, जीजी को बताना चाहती थी पर फिर बताई नहीं, नहीं तो वे डर से मर जातीं। मैंने अपने थोड़े बहुत गहने लेकर चुपचाप बिंदु का श्रृंगार कर दिया था, सोचा था जीजी की नजर में तो जरूर ही पड़ जाएगा, लेकिन उन्होंने जैसे देखकर भी नहीं देखा। दुहाई दी धर्म की, इसके लिए तुम उन्हें क्षमा कर देना। जाते समय बिंदु मुझसे लिपट कर बोली, जीजी तो क्या तुम लोगों ने मुझे एकदम त्याग दिया। मैंने कहा, नहीं बिंदु, तुम चाहे जैसी हालत में रहो, प्राण रहते मैं तुम्हें कभी नहीं त्याग सकती। 3 दिन बीते, तुम्हारे ताल्लुके के लोगों ने तुम्हें खाने के लिए जो दिया था उसे मैंने तुम्हारी जठराग्नि से बचाकर नीचे वाले कोयले की कोठरी के एक कोने में रख दिया था। सवेरे उठते ही मैं खुद जाकर उसको दाना खिला आती। 2-1 दिन तुम्हारे नौकरों पर भरोसा करके देखा, उसे खिलाने की बजाय उनका झुकाव उसी को खा जाने की ओर ज्यादा था। उस दिन सवेरे कोठरी में गई तो देखा, बिंदु एक कोने में गुड़मुड़ होकर बैठी हुई है। आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे देखते ही वो मेरे पैर पकड़कर चुपचाप रोने लगी।

0: बिंदु का पति पागल था। सच कह रही है बिंदु? बोलना
1: दीदी, तुम्हारे सामने क्या मैं इतना झूठ बोल सकती हूँ? दीदी, वो पागल है, वो पागल है। इस विवाह में ससुर की सहमति नहीं थी, लेकिन मेरी सास से यमराज की तरह वे सब डरते थे। ब्याह के पहले ही वे काशी चल दिए थे। सास ने जिद करके अपने लड़के का ब्याह कर लिया।
0: मैं वहीं कोयले के ढेर पर बैठ गई। स्त्री पर स्त्री को दया नहीं आती, कहती है कोई लड़की थोड़ी ही है, लड़का पागल है तो हो, है तो पुरुष ना, है तो पुरुष। देखने में बिंदु का पति पागल नहीं लगता, लेकिन कभी कभी उसे ऐसा उन्माद चढ़ता कि उसे कमरे में ताला बंद करके रखना पड़ता। ब्याह की रात वो ठीक था, लेकिन रात में जगते रहने के कारण और इसी तरह के और झंझटों के कारण दूसरे दिन से उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। बिंदु दोपहर को पीतल की थाली में भात खाने बैठी थी, अचानक उसके पति ने भात समेत थाली उठाकर आंगन में फेंक दी। न जाने क्यों अचानक उसको लगा मानो बिंदु रानी ससमणी हो। नौकर ने हो न हो चोरी से उसी के सोने के थाल में रानी के खाने के लिए भात दिया हो, इसीलिए उसे क्रोध आ गया था। बिंदु तो डर के मारे मरी जा रही थी। तीसरी रात को जब उसकी सास ने उससे अपने पति के कमरे में सोने के लिए कहा तो बिंदु के प्राण सूख गए। उसकी सास को जब क्रोध आता था तो होश में नहीं रहती थी, वो भी पागल ही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं, इसलिए वो ज्यादा खतरनाक थी। बिंदु को कमरे में जाना ही पड़ा। उस रात उसके पति का मिजाज ठंडा था, लेकिन डर के मारे बिंदु का शरीर पत्थर हो गया था। पति जब सो गए तब काफी रात बीतने पर वो किसी तरह चतुराई से भाग कर चली आई। घृणा और क्रोध से मेरा शरीर जलने लगा। मैंने कहा, इस तरह धोखे के ब्याह को ब्याह नहीं कहा जा सकता। बिंदु, तू जैसे रहती थी वैसे ही मेरे पास रह, देखूं तुझे कौन ले जाता है यहां से। तुम लोगों ने कहा बिंदु झूठ बोलती है। मैंने कहा वो कभी झूठ नहीं बोलती। फिर तुम लोगों ने कहा तुम्हें कैसे मालूम। फिर मैंने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूं बिंदु झूठ नहीं बोलती। तुम लोगों ने डर दिखाया, अगर बिंदु के ससुराल वालों ने पुलिस केस कर दिया तो आफत में पड़ जाएंगे हम। मैंने कहा क्या अदालत ये बात नहीं सुनेगी कि उसका ब्याह धोखे से पागल वर के साथ कर दिया गया है। तुमने कहा था तो क्या इसके लिए अदालत जाएंगे हम? हाँ, हमें ऐसी क्या गरज पड़ी है। जो कुछ मुझसे बन पड़ेगा अपने गहने बेचकर करूंगी। तुम लोगों ने फिर कहा था क्या वकील के घर तक दौड़ोगी? हाँ, इस बात का क्या जवाब होता? सिर ठोकने के अलावा और कर भी क्या सकती थी मैं। उधर बिंदु के ससुराल से उसके जेठ ने आकर बाहर बड़ा हंगामा खड़ा किया। कहने लगा थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मैं नहीं जानती मुझ में क्या शक्ति थी, लेकिन जिस गाय ने अपने प्राणों के डर से कसाई के हाथों से छूटकर मेरा आश्रय लिया हो उसे पुलिस के डर से फिर उस कसाई को लौटाना पड़े, ये बात मैं किसी भी तरह से मान नहीं सकती थी। मैंने हिम्मत करके कहा करने दो थाने में रिपोर्ट, देखती हूं मैं। इतना कहकर मैंने सोचा कि अब बिंदु को अपने सोने के कमरे में ले जाकर कमरे में ताला लगाकर बैठ जाऊं, लेकिन खोजा तो बिंदु का कहीं पता नहीं। जिस समय तुम लोगों से मेरी बहस चल रही थी उसी समय बिंदु ने स्वयं बाहर निकलकर अपने जेठ को आत्मसमर्पण कर दिया था। वो समझ गई थी कि अगर वो इस घर में रही तो बड़ी आफत में पड़ जाऊंगी मैं। बीच में भाग आने से बिंदु ने अपना दुख और भी बढ़ा लिया। उसकी सास का तर्क था कि उनका लड़का उसको खाए तो नहीं जा रहा था ना, संसार में बुरे पति के उदाहरण दुर्लभ नहीं है, उनकी तुलना में तो उनका लड़का सोने का चांद

था, मेरी बड़ी जेठानी ने कहा, जिसका भाग्य ही खराब हो उसके लिए रोने से क्या फायदा भला। संसार भर में कायरता के इस सबसे अधम आख्यान का प्रचार करते हुए तुम लोगों के पुरुष मन को कभी तनिक भी संकोच नहीं हुआ, इसलिए मानव जन्म पाकर भी तुम लोग बिंदु के व्यवहार पर क्रोध कर रहे थे, उसे तुम्हारा सिर नहीं झुका। बिंदु के लिए मेरी छाती फटी जा रही थी, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देखकर मेरी लज्जा का अंत न था। मैं तो गांव की लड़की थी जिस पर तुम लोगों के घर आ पड़ी, फिर भगवान ने न जाने किस तरह मुझे ऐसी बुद्धि दे दी। धर्म संबंधी तुम लोगों की ये चर्चा मुझे किसी भी प्रकार सहन नहीं हुई। मैं निश्चय पूर्वक जानती थी कि बिंदु मर भले ही जाए, वो अब हमारे घर लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मैं तो उसे विवाह के एक दिन पहले ये आशा दिला चुकी थी कि प्राण रहते उसे नहीं छोड़ूंगी मैं।

0: सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था तीसरा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इस कहानी का चौथा भाग आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को हवा महल कार्यक्रम में।
1: सुनो कहानी।

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: लापता लेडीज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, राम संपत का संगीत था। अब आपको सुनवा रहे हैं 80 फिल्म का गाना, मोहित चौहान और साथियों की आवाजों में कुमार के बोल, रोचक कोहली का संगीत।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख ली और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए, आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: दीदी, नौकरी लग गई।
4: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
3: हाँ दी, नया मोबाइल।
4: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
5: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
4: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
3: पर दीप,
4: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
5: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
4: अच्छा।
6: RBI कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

असी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहित चौहान, परंपरा टंडन और साथियों की आवाजों में, कुमार के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। फिल्म है बाजीराव मस्तानी, पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल के स्वर हैं। गीत और संगीत सिद्धार्थ गरिमा के।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत था। पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें, सिद्धार्थ गरिमा के बोल। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से ब्रेक के बाद।

दोस्तों, विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोल हैं। फिल्म अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों।

जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: अंग्रेजी में कहते हैं, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FMN 101.9 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो लेक सिटी। 8:45 होने को हैं। आइए जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार,

0: नमस्कार, से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्र पत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्र पत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
2: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा

0: वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित

0: भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। शर्मिली फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, नीरज की रचना सचिन देवबर्मन का संगीत।

कृष्ण के बोल मदन मोहन का संगीत था।

0: हम दोनों फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम, रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: मेरी सूरत तेरी आंखें, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया। hey!

फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और उसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर

मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाएं। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट 1 द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विकी कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विकी कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे, तो जरा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अंतराल के बाद छाए गीत का सफर आपके संग सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ गर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती, न कटती रातें तन्हाइयों में, चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त और रात का मदहोश आलम।

0: हटा दो।
1: एक हसीन मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दूं, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूं मेरे खत को किताबों में न रख देना, जरा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।

0: दिल में जरा सी।
1: आज छाए गीत का सफर बस यहीं तक। स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का नमस्कार।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे विको राजीदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: विको टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

0: दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल नादान, बड़ा

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम बैंड आपने ट्यून किया है रेडियो लेक सिटी। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और

0: और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र